हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 29वीं तिथि तदनुसार 19 जून सन 2026 है। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक

0: विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले लीजिए सुनिए ज्ञान ज्योति।

ज्ञान ज्योति अंधेरे पथ को उजियाला, विश्व मंगल सदा करता। रवि जब भी निकलता है कहीं अंधकार नहीं होता। इन पंक्तियों का सीधा और सरल सा मतलब है कि जब सूरज सुबह उगता है तो दुनिया का सारा अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। सूरज कभी भेदभाव नहीं करता, वो पूरी दुनिया को एक समान रोशनी देता है और सबका भला करता है, विश्व मंगल करता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में ज्ञान और शिक्षा, इन दोनों का भी सूरज की तरह ही महत्व है। जब हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है तो हमारे मन का सारा डर, भ्रम और अज्ञानता का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाता है। आइए इसी मंगल भावना के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वंदना कार्यक्रम की।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं वे राम कौन हैं। याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। सुप्रभात हमीरपुर लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 7:05 पर। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे हिमाचल डायरी, 8:35 से लेकर सुबह 9:20 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। सुबह 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। 10:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता। सुबह 10:15 पर कार्यक्रम रहेगा महफिले कवाली। 10:45 पर आप सुनेंगे लोक रंग। 11 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम वनिता मंडल, सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आज शाम 5:10 पर आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में रोजगार मेला 2026 के शुभारंभ का सजीव प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:15 से लेकर रात्रि 10 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आज रात्रि 10 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। 10:30 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम लेकर चांदनी रातें, और देर रात 11 आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी। आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि विहितानि। प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल AI संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिण्या सह आर्थर मेंच इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान AI इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषये अपि अवधानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2,400,000,000,000,000 रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रम रोजगार मन्त्री डॉ. मनसुख मांडवीयाः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63,00,000+ कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः, 25% न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिंदी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रम् इति सम्बोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मंत्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,200,84,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,000,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,77,140,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 7:05 हुए हैं।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल

0: पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। सुहानी सुबह की ताजी हवा और गुनगुनी धूप के साथ आप सभी का स्वागत है आज के इस सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो दोस्त नेहा मिश्रा। श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं की सुबह बेहद खूबसूरत और ऊर्जावान होगी। श्रोताओं, रोज सुबह हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, तो कोई खेतों की तरफ निकल पड़ा है। हम सब प्रबंधन में लगे हैं, पैसों का प्रबंधन, समय का प्रबंधन, करियर का प्रबंधन। लेकिन आज सुबह हमने एक बहुत ही गहरा विचार पढ़ा और इस विचार ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। ये विचार कहता है कि असली मैनेजमेंट कागजों या डिग्रियों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की इस विचार के साथ। आज का विचार है, अवसरों के बावजूद ईमानदार रहना, अधिकार के बावजूद विनम्र रहना, धन के बावजूद सरल रहना, क्रोध के बावजूद शांत रहना, यही जीवन का सर्वोत्तम प्रबंधन है। जी हाँ, कितनी बड़ी बात कह दी ना। श्रोताओं, इस विचार की पहली लाइन कहती है, अवसरों के बावजूद ईमानदार रहना। जब कोई देख ना रहा हो, जब गलत रास्ता चुनकर आसानी से फायदा कमाने का पूरा मौका हो या अवसर हो, उस वक्त भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही सच्ची ईमानदारी है। जब हमारे पास कोई मौका नहीं होता तब तो हम सब ईमानदार होते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब शॉर्टकट सामने खड़ा हो और आपकी अंतरात्मा कहे, नहीं, मुझे सही रास्ते पर ही चलना है। यही ईमानदारी आपके चरित्र को मजबूत बनाती है और रात को एक सुकून की नींद देती है। वहीं आज के विचार की दूसरी बात, अधिकार के बावजूद विनम्र रहना। जब इंसान के पास कोई पद, पावर या अधिकार आता है तो अक्सर उसके साथ थोड़ा सा अहंकार भी आता है, लेकिन असली लीडर या महान इंसान वो है जिसके पास दूसरों को झुकाने की ताकत तो हो लेकिन वो खुद झुककर दूसरों को गले लगाना जानता हो। अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि किसी को उठाने के लिए करना ही असली विनम्रता है। और इसके साथ ही जुड़ा है, धन के बावजूद सरल रहना। श्रोताओं, पैसा आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा आने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना, अपनी सादगी को ना खोना, सबसे बड़ी बात है। इतिहास गवाह है, दुनिया ने हमेशा उन्हीं अमीर लोगों को याद रखा है जिन्होंने अपनी अमीरी का दिखावा करने की बजाय अपनी सादगी से लोगों के दिलों को जीता है। और आज के इस विचार की अब सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी बात, क्रोध के बावजूद शांत रहना। जी हाँ श्रोताओं, गुस्सा एक ऐसा तूफान है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे लेकिन हमारा खुद का सुकून और हमारे रिश्ते ये ज़रूर तबाह कर देता है। जब कोई आपके सामने चिल्ला रहा हो या परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, उस वक्त खुद को काबू में रखना, चुप रहना और शांत दिमाग से सोचना, यही तो सबसे बड़ा लाइफ मैनेजमेंट है। जिसने अपने गुस्से को मैनेज कर लिया, उसने मानो पूरी दुनिया को जीत लिया। तो श्रोताओं, आज के इस खूबसूरत संदेश से हम यही सीख लेते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट कोई बिजनेस स्कूल नहीं सिखाता, बल्कि ये चार बातें सिखाती हैं। आज जब आप अपने घरों से बाहर निकलें, तो कोशिश कीजिएगा कि इनमें से कम एक बात को आज दिन भर अपनी ज़िंदगी में आप ज़रूर लागू कर सकें। इसी खूबसूरत सोच के साथ सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। पहले सुनते हैं ये संदेश और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
5: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
6: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
5: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
6: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
5: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
6: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। श्रोताओं, बीते हुए कल की दास्तां है आज, आने वाले सुनहरे कल का आगाज है आज। तारीखों के पन्नों में जो दर्ज हो गया वक्त का, वो खूबसूरत सा राज है आज। इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इतिहास से सीखा जाता है, और जो सीखते हैं वही एक दिन नया इतिहास रचते हैं। तो श्रोता तो समझ ही गए होंगे कि अब जानकारी रहेगी आज के इतिहास से जुड़ी।

0: हुई। आज है 19 जून। आपको बता दें, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधव राव सप्रे का जन्म आज के दिन हुआ था, साल 1871 में। डेनमार्क के भौतिकी विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार विजेता आजे नील्स बोर का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, साल 1922। उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, 19 जून साल 1931। कई साल कैद और घर में नजरबंद रहने के बावजूद दुनिया में आज़ादी का प्रतीक बनकर उभरी आंग सान सू की का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, साल 1945 में। वहीं आपको बता दें, मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रश्दी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, साल 1947। भारतीय राजनीतिज्ञ और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकरम सिंह का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, साल 1948। बात करते हैं आज के दिन घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। आपको बता दें, दास कैपिटल के लेखक और समाज शास्त्री कार्ल मार्क्स ने आज के दिन 1843 में विवाह किया था। वहीं यूनियन जनरल ग्रेनर ने 1865 में टेक्सास के सभी गुलामों को आज़ाद किया था। पहला फादर्स डे वॉशिंगटन में 19 जून 1910 को मनाया गया था। मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में साल 1968 को आर्थिक न्याय के लिए 50,000 लोगों ने प्रदर्शन किया था आज ही के दिन। वहीं आज ही के दिन सोवियत संघ ने साल 1991 में हंगरी को अपने कब्जे से आज़ाद किया था। आज ही के दिन बौद्धिक संपदा कानून पर 19 जून 1996 को चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समझौता हुआ था। आज ही के दिन प्रसिद्ध अंपायर डी के बर्ड एमसीसी को आजीवन सदस्यता से 19 जून 1996 को सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन कोलोन, जो कि जर्मनी में है, 19 जून 1999 को समूह 8 की शिखर बैठक प्रारंभ हुई थी। आज ही के दिन फोर्ब्स पत्रिका ने ओप्रा विनफ्रे को दुनिया की 100 ताकतवर हस्तियों में 19 जून 2005 को पहला स्थान दिया था। वहीं आज ही के दिन जापान ने उत्तरी कोरिया को परमाणु परीक्षण मामले पर 19 जून 2006 को कड़ी चेतावनी दी थी। श्रोताओं, ये तो थी आज के इतिहास से जुड़ी कुछ जानकारी। अब सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले सुनेंगे ये विज्ञापन और उसके बाद आपको ले चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज 19 जून है। आज का दिन दुनिया भर में एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने का दिन भी है। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि संघर्ष में यौन हिंसा का क्या मतलब है। जब भी दुनिया के किसी कोने में युद्ध, दंगे या कोई सैन्य संघर्ष होता है तो वहाँ महिलाएं, बच्चे और निर्दोष लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दुर्भाग्य से युद्ध के मैदानों में यौन हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो मानवता के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में इस दिन की शुरुआत की थी ताकि दुनिया भर में इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई जा सके, पीड़ितों को न्याय मिल सके और उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक मिले। श्रोताओं, हम भले ही शांत वादियों में रह रहे हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम हर प्रकार की हिंसा और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखें। शांति केवल युद्ध का ना होना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल का होना है। आज का दिन उन सभी बहादुर लोगों को सलाम करने का भी है जिन्होंने इस दर्द को झेला और आज इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि चुप्पी साधना अपराधियों का साथ देने जैसा है। हमें हर स्तर पर हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। आइए इस कार्यक्रम के साथ हम मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने समाज में, अपने आसपास एक ऐसा सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाएंगे जहां किसी भी रूप में हिंसा के लिए कोई जगह ना हो। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,

0: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त। हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे
2: और छोटी, ये तुम्हारी ना।
3: और ये मेरी गुड़िया की ना।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो। क्या?
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
0: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
0: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त। हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: सुप्रभात, हमीरपुर कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। पहली खबर की बात करें तो दुनिया ने बड़ी राहत की सांस ली है। जी हाँ, अमेरिका और ईरान आखिरकार जंग के मैदान से समझौते की टेबल पर आने को राजी हो गए हैं। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति, इन दोनों ने युद्ध को रोकने के लिए समझौते के मसौदे पर ई हस्ताक्षर किए। डील के MOU में 14 पॉइंट्स पर सहमति बनी है। इनमें तुरंत प्रभाव से ईरान ने होमर्ज को खोल दिया और अमेरिका ने भी सैन्य नाकाबंदी को हटा लिया। ईरान पर से क्रूड ऑयल बेचने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। 110 दिन की इस जंग में 7,500 जाने गईं। पेंटागन और ईरान वॉरकास्ट ट्रैकर के अनुसार इस जंग में दोनों देशों को लगभग 162 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अगली खबर की बात करें, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत का दौरा करेंगे। जी हाँ, वे 22-23 जून को होने वाली ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। वांग यी पिछले साल भी भारत आए थे और NSA के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की थी। अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF जमा पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी है। 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों के खातों में इसी महीने ब्याज जमा होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की ओर से तय 8.25% ब्याज दर पर सहमति दे दी है। अब EPFO सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करना शुरू करेगा। बोर्ड ने 2 मार्च को हुई बैठक में 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर कायम रखने का फैसला किया था। ये लगातार तीसरा वर्ष है जब ब्याज दर 8.25% रखी गई है। अगली खबर की बात करें, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संचालित 158 CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बना असमंजस फिलहाल बरकरार रहेगा। इस संबंध में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित कैबिनेट सब कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक टल गई है। अब ये बैठक अगले सप्ताह होने की संभावना है, जिसके बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। अगली खबर की बात करें, हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों से बाहर सेवाएं देने के लिए डॉक्टरों को अब आसानी से NOC नहीं मिलेगा। जी हाँ, प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए

ये व्यवस्था लागू की है। सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सक एनओसी लेकर अन्य संस्थानों, विशेषकर एम्स और केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने चले जाते हैं। अब डॉक्टरों को राज्य से बाहर सेवाएं देने के लिए एनओसी जारी करने के मामलों की कड़ी समीक्षा की जाएगी। केवल विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे मामलों पर विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि हिमाचल में डॉक्टरों के पद भरे जा रहे हैं। कोशिश है कि डॉक्टर हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में ही सेवाएं दें। श्रोताओं, ये तो थी आज के इस कार्यक्रम में कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आइए अब रुख करते हैं मनोरंजन का और सुनते हैं ये गीत।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के
3: नाम। पर दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
1: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में श्रोताओं, अब हम पहुंच गए हैं आखिरी सेगमेंट पर और आपके साथ जानकारी साझा करेंगे आज की कुछ खेल खबरों की। पहली खेल खबर की बात करें तो पूर्व हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने 413वां हॉकी मैच खेलकर भारत के लिए सबसे ज्यादा 412 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, ये रिकॉर्ड मौजूदा हॉकी इंडिया चीफ दिलीप टिर्की के नाम था। मनप्रीत ने ये रिकॉर्ड रोटरडम में FIH प्रो लीग में जर्मनी के खिलाफ भारत की 3-1 से जीत के दौरान तोड़ा। अगली खेल खबर की बात करें, वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट की सनसनी बने हुए हैं। जी हाँ, दशकों बाद ऐसा हुआ है कि भारत की T20 टीम में एक 15-16 साल का खिलाड़ी चुना गया। BCCI के सचिव देवजीत सेकिया ने उनकी तुलना दिग्गज सचिन तेंदुलकर से की है। सेकिया बोले, सीनियर टीम में 14-15 साल के खिलाड़ी आम तौर पर नहीं होते हैं। कई दशकों के बाद वैभव जैसे खिलाड़ी आए हैं। एक समय तेंदुलकर जब वे 16 साल के थे, जिन्होंने इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई थी। इसीलिए बोर्ड ने वैभव के माता पिता को आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे पर साथ जाने की अनुमति दी। वैभव अभी भारत ए के लिए श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज खेल रहे हैं, जहां टीम रविवार को फाइनल में उतरेगी। अगली खेल खबर की बात करें, फीफा विश्व कप में पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं हुई जैसी उन्होंने कल्पना की थी। पुर्तगाल अपने पहले मैच में DR कांगो से 1-1 से ड्रॉ करने पर मजबूर हो गया। टीम के लिए एकमात्र गोल जो आओ नेविस ने किया। रोनाल्डो का एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा। पुर्तगाल फॉर्म में वापस आने के लिए अब 23 जून को उज्बेकिस्तान से भिड़ेगा। अगली खेल खबर की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर नेशंस कप के पूल ए में पहला स्थान पाया। 13वें मिनट में चियारा एपिनिनो के पेनाल्टी कॉर्नर से उरुग्वे ने बढ़त बनाई। 24वें मिनट में दीपिका ने गोल कर भारत को बराबरी दिलाई। 43वें मिनट में सोरेंग के गोल से भारत 2-1 से आगे हो गया। उरुग्वे की कप्तान मैनुएला और भारत की दीपिका ने भी गोल किया। भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में कुछ खेल खबरें। थोड़ा सा वक्त हमारे पास रहता है और अब आपको ले चलेंगे हम जाते हुए मनोरंजन की दुनिया में। सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं थामना होगा। उम्मीद है कि आज की इस सुहानी सुबह बेहतरीन गीतों, स्थानीय खबरों और सकारात्मक विचारों का ये कारवां आपके दिन को एक नई ऊर्जा दे गया होगा। चलते चलते आज की एक खूबसूरत और प्रेरक बात आपके नाम करना चाहेंगे। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त नेहा मिश्रा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा। योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में

0: पूर्वोत्तर के आठों राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
4: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par lambe samay tak bharosa kiya ja sake. Aur aise samay mein Bharat vishwa mein ek trusted partner ke roop mein ubhar raha hai.
3: Mr. Modi further said the country's investment

हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में 19 जून को देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय शिमला केंद्रीय आलू अनुसंधान क्षेत्र के सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जी हां, अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब भी अदालती कार्यवाही को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की बात आती है तो पति की तुलना में पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिले भर के प्राथमिक स्कूलों में मानसून अवकाश से पहले रेडनेस मेले आयोजित किए जाएंगे। जी हां, इन मेलों के माध्यम से नए विद्यार्थी

हिमाचल प्रदेश में अब निजी क्षेत्रों में प्ले और प्री नर्सरी स्तर के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र बिना निरीक्षण के संचालित नहीं हो सकेंगे। राज्य सरकार ने ऐसे केंद्रों के पंजीकरण, नवीनीकरण और नियमित निगरानी के लिए नए व्यवस्था लागू कर दी गई है। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मसियाना में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। टीबी रोग की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उटप में एक्सरे स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर हमीर भवन में सुबह 10:30 पर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, सुबह के 8:35 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। या ये व्यक्ति अगर आ जाए या ये चीज मुझे मिल जाए, और जब वो चीजें, वो मौके और वे व्यक्ति हमें मिल भी जाते हैं तो फिर हम किसी और चीज़ के इंतज़ार में लग जाते हैं कि वो चीज़ें जब मिल जाएंगी तो हम खुश होंगे। तो इस तरह से खुशी को हम इंतज़ार करते रहते हैं, खुशी का, कि किसी खास चीज़ के मिलने पर हम खुश होंगे, और उसके मिलने पर भी हम उतने खुश नहीं होते और सोचते हैं कि अब और क्या जिससे हमें मिलेगी खुशी। तो क्या हमने भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक प्रतीक्षारत जीवन में बदल दिया है? सोचिए इस पर और सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

0: मोहित चौहान और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत, राजेश शेखर ने इसे लिखा, कृष्णा का संगीत। भाई वाकई जिंदगी में कई बार जो चीजें मिलती हैं हम उससे खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि असफलताओं, निराशाओं और उदासियों का दौर जिंदगी में आता ही है। लेकिन इन परिस्थितियों से निकलने का जब हम हौसला करते हैं तो वो जो चीज है वो हमें अनोखी शक्ति देती है। कई बार स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ होता है तो इससे भी बहुत सी परेशानियां रहती हैं और लगता है कि क्या किया जाए। तो ऐसे वक्त में अगर एक अच्छी सलाह हमें मिले तो क्या ही फायदा हो। तो कुछ ऐसा ही संदेश आइए सुनते हैं।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रेया घोषाल की आवाज में राउडी राठौर फिल्म का गीत आपने सुना, समीर के बोल साजिद वाजिद का संकेत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

एजेंट विनोद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नंदिनी श्रीकर, मुअज्जम और रिजवान, शादाब साबरी और अल्तमश फरीदी की आवाजों में नीलेश मिश्रा के बोल थे प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और आपको बता दें कि 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर।

0: इरशाद कामिल के बोल आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में। रॉकस्टार फिल्म के इस गीत में संगीत A.R. रहमान का। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

चिलर पार्टी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, अरमान मलिक और साथियों की आवाजें, नीतीश तिवारी के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

कबूल बच्चन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, शब्बीर अहमद के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 3 बजे सखियां सुन सकेंगी अपने फरमाइशी गीत हेलो सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नटाली दे लूसियो की आवाजें थी। स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर सुन रहे हैं चित्रलोक।

हवाई ज्यादा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रोचक कोहली की आवाज में, विभू वीरेंद्र पुरी के बोल और रोचक कोहली का संकेत। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक और वक्त है एक अंतराल का।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।
1: जीवन चले
2: 1015-1765 हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
6: अच्छा, इसमें क्या होगा?
5: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
6: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई OTP देना होगा?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या OTP नहीं मांगा जाता।
6: अच्छा,
5: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
7: हाँ,

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को करेंगे वितरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, समग्र व एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। शिमला जिले की 441 पंचायतों में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को किया जाएगा जागरूक। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से 100 बोरी सेब खरीदने के निर्णय को जल्द वापस लेने की मांग की। और केलंग में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश का जनजातीय इतिहास व संस्कृति विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डीबीटी के माध्यम से 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश भर में 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्य बल में शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 30% महिलाएं शामिल है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रदेश के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में हिमाचल के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए प्राप्त होगी। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार बढ़ाना और

0: की बार नौकरी पाने वाले युवाओं को मदद देना है। योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को 6 महीने बाद 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 तक, वहीं नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। योजना के तहत 2 साल में देश में 3.5 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय कर समग्र व एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। धर्मशाला में एकीकृत आयुष अस्पताल के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि इस नए अस्पताल के निर्माण से क्षेत्र में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों से युक्त एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी। शिमला जिला में नशे विशेषकर चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान 441 पंचायतों में शुरू किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि चिट्टा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है बल्कि सामाजिक चुनौती है, जिसके समाधान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर युवाओं को नशे के खिलाफ आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक जिला में मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए पुलिस द्वारा 159 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा मंडी जिला व ऊना जिला में सघन नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही है। इस दौरान टास्क फोर्स की टीम द्वारा मंडी में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार से 4 किलो 850 ग्राम चरस बरामद की गई है। मामले में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर ऊना जिला में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक अन्य कार से 25 किलो से अधिक पोस्त चूरा बरामद कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने राज्य सरकार से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत एक बागवान से केवल 100 बोरी खरीदने के निर्णय को जल्द वापस लेने की मांग की है। इनका कहना है कि मौसम की मार और विभिन्न बीमारियों के चलते बी ग्रेड सेब की मात्रा हर वर्ष लगातार बढ़ रही है और बागवान ऐसे सेबों की बिक्री के लिए HPMC पर ही पूर्णतया निर्भर है। ऐसे में 100 बोरी की लिमिट लगाना बागवानों के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है।
2: 2023 की आपदाई, 2025 की आपदाई, रोडे टूटी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो है सामान नहीं पहुंचा पाए मंडियों तक, लगातार जो डेटोरेशन हुई क्रॉप की वो हुई, उसके अलावा ऑल्टरनेरी आया, पतझड़ हुआ, जो एक क्वालिटी आनी चाहिए थी वो बागवानों को नहीं आया, अलग अलग किस्म की बीमारियां हर साल नई नई आ रही है। जब क्वालिटी डेटोरेट होती है या क्वांटिटी डेटोरेट होती है तो उसको सपोर्ट के लिए हिमफेड और HPMC हमारे से बागवानों से बोरियां खरीदा करता था, सेब खरीदा करता था, जो हम मंडियों में नहीं बेच सकते हैं, उसको आप कैसे फोर्सी करेंगे? तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लिया है। भारतीय जनता पार्टी इमीडिएटली उनसे रिक्वेस्ट करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसको रोल बैक किया जाए।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति के केलोंग में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश का जनजातीय इतिहास व संस्कृति विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें देश भर से इतिहासकारों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ बाल मुकुंद पांडे ने भारतीय इतिहास के तथ्य आधारित लेखन पर बल देते हुए जनजातीय समाज व संस्कृति के संकलन को महत्वपूर्ण बताया। सेमिनार में लाहौल के इतिहास और प्राचीन कला से जुड़े कई शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। चंबा जिला की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला इस बार 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। मेले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: मिंजर मेला जिला चंबा की प्राचीन समृद्ध संस्कृति तथा समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी मेल मिलाप व भाईचारे का प्रतीक है। मेले के मूल स्वरूप व सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए इस वर्ष भी कई कदम उठाने का फैसला लिया गया है। मिंजर मेले में स्थानीय संस्कृति की झलक को पेश करने तथा हिमाचली कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मंच प्रदान करने का भी निर्णय हुआ है। मेले के आयोजन के लिए चौगान का प्रयोग करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया है और अनुमति मिलते ही चौगान की नीलामी कर आगामी प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: प्रदेश महिला आयोग द्वारा महिलाओं को भूमि स्वामित्व के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों को जोड़ा जाएगा। ये जानकारी प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा कांगड़ा में महिला अधिकारों पर आयोजित एक कार्यशाला में दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए भूमि और संपत्ति केवल आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भर का भी आधार है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने चंबा में सड़क दुर्घटना की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल ने खबर को लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, चंबा में खाई में गिरी गाड़ी, परिवार के 6 सदस्यों सहित 7 की मौत। बिजली उपभोक्ताओं पर एक नया बोझ, 33.8 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लागू, अमर उजाला की एक खबर है। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाएंगे, बजट भी देंगे। हिमाचल दस्तक के मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है, प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी, अगले 5 वर्षों में प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर। मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, 19 से राज्य बारिश को तरसे, 7 में तो 60% तक की कमी। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात, मनाली में बारिश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को करेंगे वितरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, समग्र व एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। शिमला जिला की 441 पंचायतों में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को किया जाएगा जागरूक। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से 100 बोरी सेब खरीदने के निर्णय को जल्द वापस लेने की मांग की। और केलंग में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश का जनजातीय इतिहास व संस्कृति विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 9:30 हुए हैं। अब से लेकर सुबह 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
5: उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा कि वाह।
6: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृग्या के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया।

जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

0: मिथुन की कामयाबी में उनकी फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना और ये फिल्म भी।
1: का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर यम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।

0: Oh my God! You are in love!
1: You are in love!
0: We are in love!
2: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहादेर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रा का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म दलाल

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: हंसने का हंसाने का।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
3: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
4: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है।

0: इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है लघु वार्ता।

आज की इस लघु वार्ता में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज की इस लघु वार्ता का विषय है प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। श्रोताओं, आज इस लघु वार्ता के माध्यम से हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के ताने बाने, हमारे समाज की तरक्की और हम सब के सुरक्षित भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। भारत एक गुलदस्ता है, रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं और विभिन्न धर्मों आस्थाओं को मानने वाले लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। हमारी यही विविधता में एकता पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। लेकिन इस गुलदस्ते को खूबसूरत बनाए रखने के लिए इसकी सुरक्षा करना भी बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ समाज के हर वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यकों के कल्याण और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है। आज की इस वार्ता में हम इसी कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे और वो पहलू है सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम और सामाजिक सौहार्द। अगर किसी समाज में डर का माहौल होगा, अगर वहाँ अशांति होगी, तो ना तो कोई बच्चा ठीक से पढ़ पाएगा और ना ही विकास की कोई योजना जमीन पर उतर पाएगी। इसीलिए इस 15 सूत्रीय कार्यक्रम का एक बेहद अहम हिस्सा सीधे तौर पर सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम को समर्पित किया गया है। श्रोताओं, जब हम सांप्रदायिक घटना ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? अविश्वास, नफरत और हिंसा। कोई भी सांप्रदायिक हिंसा केवल दो समुदायों के बीच की लड़ाई नहीं होती, बल्कि वो पूरे देश की प्रगति पर एक ब्रेक की तरह होती है। इससे किसी का भला नहीं होता, नुकसान सिर्फ इंसानियत का होता है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सरकार ने सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिए बहुत ही सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए हैं। गड़बड़ी वाले इलाकों की पहचान। यहाँ प्रशासन का पहला काम होता है उन इलाकों की पहचान करना जहाँ अतीत में तनाव रहा हो या जहाँ अफवाहों के कारण माहौल बिगड़ने की आशंका हो। ऐसे इलाकों में पुलिस और प्रशासन पहले से ही मुस्तैद रहते हैं। इस कार्यक्रम के तहत साफ निर्देश हैं कि यदि कोई भी तत्व समाज में नफरत फैलाने या हिंसा भड़काने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं अफवाहों पर लगाम। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें आग में घी का काम करती हैं। इस नीति के अंतर्गत जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल बनाए जाते हैं जो झूठी खबरों और अफवाहों को समय रहते रोक सकें। श्रोताओं, रोकथाम के साथ साथ ये कार्यक्रम इस बात पर भी जोर देता है कि अगर दुर्भाग्य से कहीं कोई अप्रिय घटना घट जाए तो प्रशासन की भूमिका क्या होनी चाहिए। त्वरित न्याय। जी हाँ, ऐसी घटनाओं के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा सकता है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और पीड़ितों को न्याय। वहीं उचित मुआवजा और पुनर्वास। हिंसा से प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक मदद, चिकित्सा सहायता और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना इस कार्यक्रम का एक बेहद मानवीय और अनिवार्य हिस्सा है। जब तक पीड़ित खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक समाज में दोबारा भरोसा कायम नहीं हो सकता। श्रोताओं, कानून अपनी जगह काम करता है, पुलिस अपनी जगह मुस्तैद रहती है, लेकिन क्या केवल कानून के भरोसे एक शांत समाज का निर्माण किया जा सकता है? नहीं,
असली रोकथाम तो हमारे और आपके दिलों से शुरू होती है। सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में हम एक नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं, आइए इस बात पर विचार करते हैं। करना क्या है, अफवाहों के फॉरवर्डर ना बने। जी हाँ, जब भी आपके मोबाइल पर कोई ऐसा मैसेज, वीडियो या ऑडियो आए जिससे किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नफरत झलकती हो, तो उसे आगे बढ़ाने की बजाय वहीं डिलीट कर दें। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी शहर की शांति छीन सकता है। संवाद बनाए रखें। अक्सर दूरियां तब बढ़ती हैं जब हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, त्योहारों की खुशियां बांटें, सुख दुख में साथ खड़े हों। वहीं शांति समितियों की भूमिका, हर मोहल्ले और गांव में अमन कमेटियां होती हैं, इनमें बुजुर्गों या युवाओं को मिलकर काम करना चाहिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमारे आपसी भाईचारे को नुकसान ना पहुंचा सके। तो श्रोताओं, आज की इस लघु वार्ता का सार यही है कि विकास की पहली शर्त शांति है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम केवल कागजी सूचियों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षित, समृद्ध और समावेशी भारत बनाने का एक रोड मैप है। हमारा इतिहास गवाह है कि जब जब भारत एक होकर खड़ा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं धकेल पाई। कबीर, रहीम, गुरु नानक और सूफी संतों की इस भूमि पर नफरत की कोई स्थायी जगह हो ही नहीं सकती। खुशबू की तरह महके मेरा वतन, खुशबू की तरह महके मेरा वतन, हर दिल में मोहब्बत की कली खिले। मजहब तो सिखाता है जोड़ना, यहाँ हर इंसान इंसान से मिले। आइए श्रोताओं, इस लघुवार्ता के माध्यम से हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने स्तर पर कभी भी देश की एकता और अखंडता को आंच नहीं आने देंगे। हम अफवाहों को हराएंगे, हम नफरत को मात देंगे और अपने आपसी प्यार से इस गुलदस्ते को हमेशा महकाते रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 10:15 हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल कवाली।

दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। जब रूह तड़पती है तो अल्फाज सुरों का लिबास पहन लेते हैं, और जब सुर और रूह मिलते हैं तो कवाली बनती है। महफिले कवाली कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम और आप मिलकर सजाने जा रहे हैं एक ऐसी महफिल जहां नफरत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और सिर्फ मोहब्बत, सूफियत और रूहानियत की गुफ्तगू होती है। तो लीजिए सुनते हैं आज के इस सफर में ये पहली कवाली।

जैसे ही ताली की थाप और हारमोनियम के सुर गूंजते हैं, इंसान दुनिया की सारी फिक्र भूलकर एक अलग ही रूहानी दुनिया में चला जाता है। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महफिले कवाली। शमा जलती है तो परवाने चले आते हैं, जिक्र होता है महफिल में तो दीवाने चले आते हैं। आइए इस महफिले कवाली में डूब जाएं, जहां टूटे हुए दिलों को भी ठिकाने मिल जाते हैं।

श्रोताओं, वक्त का पता ही नहीं चला। जब महफिल इतनी हसीन हो और साथ आप जैसे प्यारे श्रोता हों तो घड़ी की सुइयां बहुत तेज़ी से भागती हैं। अब वक्त हो चला है आज की इस महफिल कव्वाली को यहीं पर थामने का, लेकिन घबराइए मत, सुरों का ये कारवां थमेगा नहीं। ये महफिल फिर सजेगी, नए कलाम होंगे, नई बातें होंगी और यही रूहानी सुकून होगा। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि दिलों में मोहब्बत बनाए रखिए, अफवाहों और नफरतों से दूर रहिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई मर्तबा नहीं होता। इस खूबसूरत दुआ के साथ विदा लेते हैं। रहे सलामत भाईचारा हमारा और आपका, हर दिल में धड़कता रहे ये सूफियाना तराना हमारा और आपका। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त निहम्षा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल कव्वाली। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:45 हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

कार्यक्रम लूट रंग सुनने वाले यहाँ दिया सारे श्रोताओं जो मेरा यानी कि शिवाली दा प्यार भरा नमस्कार दिखा श्रोताओं कार्यक्रम ले कने हाँ हाजिर होइए कने इस कार्यक्रम च हाँ कर दे मनोरंजन तो हाँ दा प्यारे प्यारे लोक गीता सौगी कने कर दे गल्लां बातां तां दिखा बरसाती दा मौसम जैसे शुरू हो गया कने इस मौसम च दिखा हाँ जो हूँ अपनी देखभाल जी ऐसे होर ज़्यादा जरूरी हो जाती कि हाँ घर से बाहर निकलना कि अपनी सुरक्षा करनी कि हाँ अगर वाहन चलाते तो कि जिसका अह ढंग तीसो चलाना ताकि अह सुरक्षा कने जी ऐसे ड्राइविंग करी सकन कने हर चीज़ प्रति जी ऐसे सजग रहना ही क्योंकि जरूरी हो जाता बरसाती के मौसम से जी बरखा ज़्यादा होती है फिसलन का डर रहा गिरने का डर रहा ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੌਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ।

0: अच्छा सिंह परमारा की आवाज़ च अहां सुनाया तुहां जो यह प्यारा जिहा लोक गीत। श्रोताओ इत्थे वक्त होई गया एक छोटी जी ब्रेक दा, तां ब्रेक दे बाद अहां लौटना कन्ने सुनाना तुहां जो कार्यक्रम दा अगला लोक गीत।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
5: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
4: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
5: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज

0: दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
0: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी, इस छोटे जे कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बारी तुहांदा फिर इत्थे स्वागत करदे कार्यक्रम लोक रंग च। गनाइए सुणांदे तुहां च कार्यक्रम का ये अगला लोक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हिमाचल
3: जी। ताइसे सौगी कार्यक्रम लोक रंग उणुई इथे खत्म हुंदा, अपनी रेडियो हम सफर शिवाली जोदिया इजाजत, नमस्कार।

जी, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डीबीटी के जरिए 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश भर में 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्य बल में शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 30% महिलाएं शामिल है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रदेश के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में हिमाचल के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए प्राप्त होगी। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार बढ़ाना और पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को मदद देना है। योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को 6 महीने बाद 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 तक, वहीं नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। योजना के तहत 2 साल में देश में 3.5 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जाएगी। इस किश्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय कर समग्र व एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। धर्मशाला में एकीकृत आयुष अस्पताल के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि इस नए अस्पताल के निर्माण से क्षेत्र में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों से युक्त एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने राज्य सरकार से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत एक बागवान से केवल 100 बोरी सेब खरीदने के निर्णय को जल्द वापस लेने की मांग की है। इनका कहना है कि मौसम की मार और विभिन्न बीमारियों के चलते बी ग्रेड सेब की मात्रा में हर वर्ष लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बागवान ऐसे सेबों की बिक्री के लिए एचपीएमसी पर ही पूर्णतया निर्भर है। ऐसे में 100 बोरी की लिमिट लगाना बागवानों के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है।
2: 2023 की आपदाई, 2025 की आपदाई, रोडे टूटी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो है सामान नहीं पहुंचा पाए मंडियों तक, लगातार जो डेटोरेशन हुई क्रॉप की वो हुई, उसके अलावा ऑल्टरनेरी आया, पतझड़ हुआ, जो एक क्वालिटी आनी चाहिए थी वो बागवानों को नहीं आया, अलग अलग किस्म की बीमारियां हर साल नई नई आ रही है। जब क्वालिटी डेटोरेट होती है या क्वांटिटी डेटोरेट होती है तो उसको सपोर्ट के लिए हिमफेड और एचपीएमसी हमारे से बागवानों से बोरियां खरीदा करता था, सेब खरीदा करता था, जो हम मंडियों में नहीं बेच सकते हैं, उसको आप कैसे फोर्सी करेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लिया है। भारतीय जनता पार्टी इमीडिएटली उनसे रिक्वेस्ट करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको रोल बैक किया जाए।
0: चंबा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों के सोशल ऑडिट के तहत कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कमियां उजागर हुई है। ये ऑडिट प्रदेश विश्वविद्यालय की एक टीम द्वारा जिला के 20% स्कूलों में किया गया है। ऑडिट की रिपोर्ट के सामने आए तथ्यों को चंबा में आयोजित एक जन सुनवाई के दौरान सार्वजनिक किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किए गए हैं, जबकि अधिकतम तापमान में 2 से 6 डिग्री तक सामान्य से कम चल रहे हैं। विभाग ने आज राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ तूफान आने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 22 जून तक राज्य में कहीं कहीं बारिश का क्रम जारी रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दिन में 12 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, लिया है गीत गजल एल्बम से। धीरज कौर ने इसे गाया, मोहसिन नकवी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने इसे संगीतबद्ध किया।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से मुकेश की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों के साथ, मुरली मनोहर स्वरूप के संगीत से के साथ में यह प्यारा सा नगमा।

0: इंद्राणी रिज्व और राजकुमार रिजवी की आवाज़ में हम सुन रहे थे इस नगमे को। बशीर बद्र ने जिसे लिखा और बेनी सतामकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती

0: ती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा उर्दू मॉडर्न गज़ल एल्बम से। तलत महमूद ने इसे गाया, इब्राहिम फैज़ इसके गीतकार हैं और संगीतकार हैं ताज अहमद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अगली नज़्म जो गाई है हेमंत कुमार ने। संतोख सिंह इसके गीतकार हैं और तरसीम लाल इसके संगीतकार।

0: वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

मॉडर्न नॉन फिल्मी गज़ल एल्बम से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजे हुए खयाम के संगीत के साथ इस सुंदर से नगमे को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एल्बम से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसे गाया है, साहिर होशियारपुरी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला नगमा।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग करता

0: रंग तरंग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 12 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता मंडल।

0: वनिता मंडल। कार्यक्रम वनिता मंडल सुनने वाली हमारी सभी सखियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं उनकी अपनी रेडियो सखी शिवाली और मेरे साथ हैं
1: आपकी अपनी रेडियो सखी नेहा मिश्रा।
0: जी नेहा, और देखिए स्वागत करते हैं अपनी सभी बहनों का इस कार्यक्रम में और कहते हैं उन्हें प्यार भरी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी।
1: और देखिए ना, हम महिलाएं ना कितनी कमाल की जादूगर होती हैं। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर ऑफिस की फाइलों तक और घर के बुजुर्गों की देखभाल से लेकर मेहमानों की खातिरदारी तक, हर चीज हम मुस्कुराकर संभाल लेते हैं।
0: जी बिल्कुल। देखिए, एक शक्ति होती है ना हमारी सभी बहनों में कि वो जब भी सुबह उठती है ना तो एक अलग ही ऊर्जा के साथ, एक अलग ही एनर्जी उनके अंदर भरी होती है और इन्हें लगता है कि वो अपने सारे काम बिल्कुल फटाफट करके जो है वो एकदम से अपने जो उनकी अपनी एक कहते हैं ना कि हमारी कई सारी इच्छाएं होती हैं उन्हें करने के लिए, उन्हें बहुत सारे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पर लेकिन नेहा, यहाँ पर कहीं ना इन चीज़ों को परे रख के हम जो हमारे घर के काम होते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं ना, उनसे कई बार हम इतना थक जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा जीवन है ना वो बिल्कुल ऐसे तनावपूर्ण, तनाव से भर चुका है। और कहा ना मैंने कि जो हमारे सपने होते हैं उन्हें हम कहीं पीछा छोड़कर फिर हम इन सारी चीज़ों में जो है वो बहल जाते हैं।
1: बिल्कुल, ये जितनी भी आपने बातें कही ना, हमारी जितनी भी सखियाँ इस वक्त हमें सुन रही हैं, उन्हें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि दूसरों का ख्याल रखते रखते हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना ख्याल रखना भूल गए हैं। और ऐसा होता है कि हम लोग भूल तो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना ख्याल रखना भूल चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इसी भाग दौड़ का नतीजा वही है जो आपने एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया, तनाव।
0: बिल्कुल। देखिए, ये जो तनाव है ना वो किस तरह

0: तरंग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 12 बजे हैं, लीजिए वह प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता मंडल।

0: वनिता मंडल। कार्यक्रम वनिता मंडल सुनने वाली हमारी सभी सखियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं उनकी अपनी रेडियो सखी शिवाली और मेरे साथ हैं
1: आपकी अपनी रेडियो सखी नेहा मिश्रा।
0: जी नेहा, और देखिए स्वागत करते हैं अपनी सभी बहनों का इस कार्यक्रम में और कहते हैं उन्हें प्यार भरी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी।
1: और देखिए ना, हम महिलाएं ना कितनी कमाल की जादूगर होती हैं। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर ऑफिस की फाइलों तक और घर के बुजुर्गों की देखभाल से लेकर मेहमानों की खातिरदारी तक, हर चीज हम मुस्कुराकर संभाल लेते हैं।
0: जी बिल्कुल। देखिए, एक शक्ति होती है ना हमारी सभी बहनों में कि वो जब भी सुबह उठती है ना तो एक अलग ही ऊर्जा के साथ, एक अलग ही एनर्जी उनके अंदर भरी होती है और इन्हें लगता है कि वो अपने सारे काम बिल्कुल फटाफट करके जो है वो एकदम से अपने जो उनकी अपनी एक कहते हैं ना कि हमारी कई सारी इच्छाएं होती हैं उन्हें करने के लिए, उन्हें बहुत सारे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पर लेकिन नेहा, यहाँ पर कहीं ना इन चीज़ों को परे रख के हम जो हमारे घर के काम होते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं ना, उनसे कई बार हम इतना थक जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा जीवन है ना वो बिल्कुल ऐसे तनावपूर्ण, तनाव से भर चुका है। और कहा ना मैंने कि जो हमारे सपने होते हैं उन्हें हम कहीं पीछा छोड़कर फिर हम इन सारी चीज़ों में जो है वो बहल जाते हैं।
1: बिल्कुल, ये जितनी भी आपने बातें कही ना, हमारी जितनी भी सखियाँ इस वक्त हमें सुन रही हैं, उन्हें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि दूसरों का ख्याल रखते रखते हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना ख्याल रखना भूल गए हैं। और ऐसा होता है कि हम लोग भूल तो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना ख्याल रखना भूल चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इसी भाग दौड़ का नतीजा वही है जो आपने एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया, तनाव।
0: बिल्कुल। देखिए, ये जो तनाव है ना, वो किस तरह, अगर हमें ये चीज करनी है अपने लिए तो हमें कई सारी चीजों को जो है वो पीछे छोड़ना पड़ता
1: जी,
0: है।
1: और जैसे आपने कहा ना कि कई सारी चीजें जिनको छोड़ना पड़ता है, तो एक रूटीन रहती है कि हम सभी साथ में इकट्ठे उठें, तो बेहतर होगा यदि आपको अपने लिए समय निकालना है तो पूरे परिवार से तकरीबन 20 मिनट पहले
0: उठ जाए। जी।
1: और वो समय ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ आपका है, आपके लिए है। आप ये सोच सकें कि आपने पूरे दिन में क्या करना है, किस तरह से शुरुआत करनी है। वो 20 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा चाय लेकर आओ, कोई नहीं कहेगा झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ।

0: वो 20 मिनट आपके होंगे, अपने होंगे, और आप एकदम शांति से सोच सकते हैं कि अब पूरे दिन में मुझे क्या करना है, सुबह अभी मैंने पहला काम क्या करना है।
1: देखिए नेहा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता तो है, लेकिन जो हमारी बहनें होती हैं ना, उनके दिमाग में उठकर ही ये बातें घर कर जाती हैं कि अगर हमारा 5 मिनट भी हमने अगर किसी चीज़ के लिए कहीं और लगा दिए तो जो हमारा डेली का काम है ना, वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगा, लेट हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपने अपने जीवन में कुछ पाना है ना, तो हमने पहले भी कहा कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं, एक कोई काम आपका कम हो गया, किसी काम के लिए थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन जो जिस चीज़ की शुरुआत आप कर रहे हैं, अगर वो आपकी नींव पक्की है, वहाँ से अगर आप बिल्कुल अपने आप को मजबूत बनाएंगे ना, तो ज़रूर आप हमेशा अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं।
0: जी, तो विश्वास मानिए सभी हमारे सखियाँ और श्रोता कि जब आप खुद को ये 20 मिनट देंगे तो आपका बाकी का पूरा दिन दुगना उत्साह और दुगनी एनर्जी के साथ बीतेगा।
1: बिल्कुल।
0: और इस वक्त वक्त जो है वो हमें इशारा कर रहा है कि भाई अब बातें ही करते रहोगे या कुछ मनोरंजन भी करवाओगे।
1: बिल्कुल, मनोरंजन तो हम लेकर आए हैं अपनी बहनों के लिए, तो एक प्यारा सा गीत अपनी सभी बहनों के लिए।

में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: होती है।
1: जी
0: अब देखो कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको आदत होती है कपड़ों को इकट्ठा करते रहना, इकट्ठा कर। बरसात के मौसम में ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
1: जी
0: इस समय मौसम में, वातावरण में मौजूद जो नमी रहती है वो कपड़ों को खराब कर देती है, और इसलिए रोज कपड़ों को साफ तरीके से,
1: खुशबूदार ऐसे रोज फ्लेवर में, नींबू फ्लेवर में, तो इस तरह के डिटर्जेंट का आप इस्तेमाल करने के बाद उनका फैब्रिक जो जो है वो सॉफ्ट रहता है, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो दूर नहीं होती है।
0: जी, और विनेगर भी बहुत खास रोल प्ले करता है इस चीज़ में। बारिश के मौसम में अपने कपड़ों को धोते वक्त एक अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट के साथ अगर 1 कप वाइट विनेगर या 2 चम्मच सोडा
1: बिल्कुल
0: हम डाल सकें तो ज़रूर डालें। ये न सिर्फ आपके कपड़ों से हर तरह की दुर्गंध को दूर करेगा, बल्कि इस मौसम में कपड़ों से आने वाली जो अजीब सी महक रहती है, बदबू रहती है, उनको भी दूर रखेगा। वहीं इसके अलावा ये हमारे कपड़ों से फंगस को दूर भी रखेगा और उनको एकदम फ्रेश
1: बिल्कुल
0: फ्रेश फील करवाएगा। जब हम उन्हें पहनेंगे तो दिल करेगा कि नहीं, वाकई हमने कुछ अच्छा चीज़
1: अच्छा पहना
0: पहनी
1: है।
0: है।
1: हाँ बिल्कुल। और देखिए इन दिनों आप हमारे कपड़े ना देखिए सिल जाते हैं, हमें ऐसे लगता है ना कि हमने सुखाए हैं फिर भी अंदर रख के जब वो इकट्ठे रह जाते हैं तो एक अजीब सा है ना कपड़ों को छूकर लगता है।
0: हमारा जो शरीर है वो फील करता है उस
1: बिल्कुल
0: नमी को।
1: हाँ। तो ऐसे में आप अपने कपड़ों को खुश करने के लिए उनको खुले स्थान में सुखा सकते हैं, है ना। मगर बरसात के दिनों में अगर धूप कम होने के बाद कपड़े आप बाहर सुखाने में अगर मुश्किल होती है तो आप घर के अंदर ही कपड़े सुखा सकते हैं। इसके अलावा आप एक रस्सी बांध लें, उस पर हैंगर लगाएं, या 3-4 घंटे तक आप पंखे को चलाकर भी छोड़ सकते हैं, जिससे अगर थोड़ी बहुत नमी होगी तो वो भी निकल जाती है। ऐसे में बदबू आने का जो वो रहता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और जब भी आपको मौका लगे तो कपड़ों को धूप ज़रूर दिखा दे जब भी धूप निकलती है, क्योंकि धूप कपड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है।
0: जी, और देखिए ना, कपड़े धो भी लिए, सुखा भी लिए, लेकिन उसके बाद भी असली चुनौती जो है वो शुरू होती है,
1: बिल्कुल
0: और वो चुनौती तब आती है जब हमें उन कपड़ों को अलमारी में रखना होता है।
1: जी
0: बरसात के दिनों में लकड़ी की अलमारियों में अंदर ही अंदर नमी बैठ जाती है, जिससे महंगे सूट, साड़ियाँ, ये जो कोट वगैरह होते हैं, ये सभी खराब होने लगते हैं। और
1: जी
0: इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ बेहतरीन नुस्खे हैं जो बताए हैं, और नुस्खे तो आपको भी पता है, हमारी सखियों को भी पता होंगे, और वो शायद आजमाती भी होंगी इन
1: जी
0: चीज़ों को।
1: बिल्कुल
0: कपूर रखना अलमीरा में, उससे

0: कॉलेजेस, जहाँ है
1: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
1: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हिमाचल।
2: जी नेहा, तो अब मुझे लगता है कि घड़ी की सुइयां अब हमारी तरफ इशारा कर रही हैं कि वक्त अब इतना ही है कार्यक्रम का, तो अब लेनी होगी उनसे हमें अनुमति। और
3: जी, और मिलकर कहते हैं अपनी सभी सखियों को
2: नमस्कार।
4: वनिता मंडल, वनिता मंडल।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: जी, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मैं

0: मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से अभी मैंने आपको गीत सुनवाया चित्रा और शान की आवाजों में। श्रोता वक्त चला है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद लौटेंगे और सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम का अगला गीत।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,000 किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: जी, इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 1 बजे हैं, आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
1: बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर तय कर रहा है एक बढ़िया मजबूत सी बात को और बड़े प्यारे से जज्बात को, और इन्हीं बात और जज्बात के बीच में बात आती है कि सुरीला सफर में हम जो इबारत देते हैं, आज इबारत कौन सी है? तो आज की इबारत है कि वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है। वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, एक गीतकार अपनी कलम से जिंदगियां लिखता है। और अब आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है, बताएं और अपने पसंदीदा गीतकार के बारे में सोचें और लिखें अवश्य ही, और उनका कौन सा गीत सुनना आपको पसंद है ये भी अगर आप बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और आज की इस इबारत भरे सुरीला सफ़र में हमने जो इबारत दी उस पर बहुत सारे विचार आए हैं, और प्रत्येक विचार अपने आप में उम्दा है, सटीक है, सत्य है, और उनमें से कुछ विचार जो है वो हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के प्रश्नवाची इबारत स्वयं ही संपूर्ण उत्तरित है। गीतकार, कवि, शायर और नगमा निगार वो हस्तियां हैं जो अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से रचनात्मक और सृजनात्मक आवेश की सृष्टि कर रचनाओं और पाठकों का दिल में घर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं आज की संपूर्ण इबारत ही दिल की धड़कन ही लिख दी है, धन्यवाद। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गीतकार केवल शब्द नहीं लिखता, वह अपने भाव, अनुभव, संवेदनाओं को गीतों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। गीतकार के लिखे गीत कभी प्रेम का संदेश देते हैं, कभी जीवन की सीख, कभी उम्मीद, कभी प्रेरणा का सहारा बनते हैं। वो अपनी कलम से ऐसी दुनिया रचता है जिसमें हर श्रोता अपने मन की कहानी खोज लेता है। इसलिए गाने केवल मनोरंजन के नहीं, हमारे जीवन की धड़कनों के संगीत भी होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों की वो जो विधाएं हैं उनको बड़े अच्छे से सजा दिया है। लिखते हैं रोमानी गीत, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, साहिर जी, ये आप बताइएगा ये सही लिख रहे हैं नहीं। दार्शनिक जीवन दर्शन, शैलेंद्र गुलजार, आनंद बख्शी, प्रगतिशील विचारधारा, कैफे आजमी, देशभक्ति, कवि प्रदीप, गोपालदास, नीरज, प्रेम धवन, सुगम और विविध, मजरूह सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण, भक्ति, पंडित नरेंद्र शर्मा, भरत व्यास, पंडित इंद्र जी, बिल्कुल बहुत सारे इन्होंने बातें लिखी हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में जितने भी गीतकार, शायर और कवि हैं सब अपनी जगह महान थे, सब किसी एक को पसंद करना कठिन है, और ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा है कि कठिन है। हमारे श्रोता लिखते हैं बोलती फिल्में आने के बाद फिल्मों में गीतों का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यही गीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी बनने लगे। गीतकार और संगीतकारों की मांग बढ़ने लगी, फिर गीतकार कवियों शायरों के सामने चुनौती आने लगी, कोई एक लक्ष्मण रेखा के अंदर उनको रहना पड़ा, गीत कहानी सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखने पड़े, और गीतकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक से बढ़कर एक गीत लिखकर मिसाल पेश की है। गीतकार शब्द कागज़ पर नहीं उतरते, वे सीधे दिल में उतर जाते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। उनकी रचनाएं सुनकर लगता है जैसे वे हमारे अनकहे एहसासों को आवाज़ दे रहे हों। अच्छा गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखता, वह यादें, भावनाएं, रिश्तों की खुशबू में पिरो देता है। ये बात बड़े अच्छे से वह लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं एक प्यारी सी बात कहेंगे कि गीतकार वह दीपक है जो शब्दों की लौ से भावनाओं का संसार रोशन कर देता है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। और इस बढ़िया सी सोच को, इस प्यार बढ़िया से विचार को पढ़ने के साथ ही हम आपको गीत सौंपने वाले हैं, और पहला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं उस गीत में, पूरा जो गीत है उस गीत में कोई एक पंक्ति होगी जो आपको जाकर दिल में चुभती होगी या दिल को सुकून देती होगी, तो बताइएगा वो पंक्ति कौन सी है, वो लिखकर हमें भेजिएगा, और उसके साथ ही इस गीत के संगीतकार का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बताइए इस गीत के कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है, साथ ही संगीतकार का नाम भी।

अपनी तो आंख एक है, उसकी है हजार, ये कौन चित्रकार है। ये गीत हम सुन रहे थे बूंद जो बन गए मोती फिल्म से मुकेश की आवाज में। गीतकार भरत व्यास ने इसे लिखा है और सतीश भाटिया ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये खूबसूरत से नगमे जो लिख जाते हैं या जिनने अपनी धड़कनों को शायद पिरो दिया है शब्दों के माध्यम से, कितना खूबसूरत है। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत से भी हमने पूछा था कि आपकी पसंदीदा पंक्तियां कौन सी हैं, तो हमारे श्रोता लिखता है, ध्वजा से हैं खड़े हुए ये वृक्ष देवदार के। आहा, कितनी बढ़िया है ना। हमारे श्रोताओं ने कवि की कल्पना का चमत्कार, यह उम्दा लाइन जहन में आती है। जी बिल्कुल। हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये कौन चित्रकार है, ये कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता ने बताया कि जितेंद्र पर फिल्माया गया कवि प्रदीप की यह बेहतरीन रचना है और संगीत सतीश भाटिया का। हमारे श्रोता ने पसंदीदा पंक्तियों में तो पूरा ही लिख दिया, तपसियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटी।

कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है जी? बिल्कुल कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंखें उसकी हजार हैं जी। ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है, जो सबको पसंद आ रही है। हमारे श्रोताओं ने, अच्छा आप हमारी हवाइन गिटार के बारे में बता रहे हैं।

के सभी गीतकारों ने अपने खास अंदाज में बेमिसाल गीत दिए हैं, उनमें से एक चुनना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, हमें भी बहुत मुश्किल है। अब 1957 में आई फिल्म साधना में मर्द को जन्म देने वाले गीत के लिए उन्होंने बहुत प्यारा गीत दिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गीत सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये गीतकार अपनी कलम से क्या खूबसूरती से उस बात को, उस भावना को निकाल देते हैं जिसे कहना शायद शब्दों में कठिन पड़ जाए, शायद गद्य में कठिन पड़ जाए, पर पद्य में बड़े प्यार से लिख देते हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि जो इनके गीतों के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं, सिर्फ तीन शब्दों में लंबी बात है और शब्दों का चित्रण निरूपण विश्व को रचने वाले रचनाकार की प्रतिभा का बहुत बड़े तरीके से हम आकलन करेंगे। और गीत रचना किसी संगीत धुन और भावनाओं का गहरा पुल है और अनुभवों को छू लेती है। और सच बात है, गीतकार शब्द नहीं लिखते, हमारे श्रोता लिखते हैं, वे शब्दों के जादूगर होते हैं जो चंद शब्दों में पूरी दास्तान पिरो देते हैं। हमारी खुशियां, आंसू, यादें, सब कुछ अनमोल म्यूजिकल बैकग्राउंड बना देते हैं। आमजन कहीं कह नहीं पाते वो बातें गीतकार, कवि और शायर अपने शब्दों में कह देते हैं। सही बात है। और इन्होंने तो, एक और हमारे श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों के नाम भी लिखे हैं और हम उन सब गीतकारों की उस कलम को प्रणाम करते हैं कि क्या बढ़िया लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वह सोच रही हैं कि अब वह लिखना बंद कर देंगी, यानी सिर्फ सुनेंगी। ऐसा मत कीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, बाकी समय जो आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो शायद उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वह आपकी ही कलात्मकता को बढ़ा रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो आप ज़रूर पहुँचाइए अपनी अनुभूतियाँ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि व्याकरण शब्दावली ही नहीं, रचयिता के व्यक्तिगत अनुभव, अनुभूतियाँ, भावनाओं, जीवन का सार होता है। गीतकार जिंदगी लिखा करते हैं, शब्द नहीं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। और इन्हीं गीतकारों को याद करते हुए अगला

0: पसंद है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। जी कल और आएंगी नगमाए खिलती कलियां, चुनने वाले मुझसे बेहतर, कहने वाले तुमसे बेहतर, सुनने वाले। ये लाइन हमारे श्रोताओं को पसंद है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने कक्षा 9वीं में देखा था इस फिल्म को और नौजवान दिल उस समय शायरी सुनकर धड़क गया था। सही बातें, होता है ऐसा। और हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी अपनी पसंद के शेर हम तक पहुंचाए हैं जो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही और भी कई सारे आए हैं, उन्हें बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, जैसे कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, संसार की हाय शर पर बस इतना फसाना है कि धुंध से आना है। बहुत सही बात आपने लिखी, बहुत बढ़िया शेर आप लिख रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें जो लिखी हैं इन सब गीतों और रचनाकारों के लिए, वो लिखते हैं कि गीत आम इंसान के जीवन के अनुभव छिपे होते हैं, अपनी कल्पना अनुभव से रचनाएं करते हैं और खुद की कहानी जिंदगी का कोई हिस्सा नजर आता है। सही बात है। आज की इबारत, पंक्तियों का भावार्थ बहुत गहरा महत्वपूर्ण है, कवि गीतकार संवेदनशीलता उसकी कलम की ताकत रेखांकित करता है, वे सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कने लिखता है। सही, यह दर्शाती है कि एक सच्चा गीतकार कागज पर केवल शब्दों का जाल नहीं बुनता, बल्कि जज्बात, उसकी धड़कने, प्यार, दर्द और उम्मीदों को पन्नों पर उतारता है। इतनी अच्छी बातें चल रही हैं, तो हम सोचते हैं एक संदेश एक और गीतकार का आपको सुनवा दिया जाए। सुनिए ये गीतकार क्या कहने के लिए आने वाले हैं अपने विविध भारती पर।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और ये सुरीला सफर चल रहा है गीतकारों की कलम के साथ। हमारे श्रोताओं ने बहुत सही लिखा है, वो लिखते हैं कि गीतकार कैसे पसंद करते हैं। हमारे लिए तो सभी गीतकार पसंद हैं, हर कोई दिल में रहता है, अनुभूति करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। और हमारे श्रोता ने कहा कि वो आज गुलजार, इतना कठिन है उनको चुनना, लेकिन फिर भी वो गुलजार को चुनेंगे और उसके साथ उन्होंने अपने पसंद का गीत भी दिया है। ऐसे ही हमारे कई सारे श्रोताओं ने गुलजार को पसंद किया है। और साथ ही हम बात कर रहे थे साहिल लुधियानवी के बारे में, तो उनके लिए भी कुछ, उनके लिखे हुए कुछ नगमे, कुछ शेर हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। किसी ने तो लिख दिया कि साहिल लुधियानवी की एक लाइन नहीं बल्कि हर बात उन्हें अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातों के बीच एक बहुत प्यारा शेर आया कि हजार वर्क गिरे लाख आंधियाँ उठें, हजार वर्क गिरे लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें साहिल के लिए लिखी हैं। वो लिखते हैं कि उनका

अच्छी बात लिखी है। रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत उकेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा, कारवां गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपालदास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे श्रोता बताते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, गोपालदास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद है, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद हैं। उसके साथ ही हमारे गोपालदास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी फिर फिल्मी गीतकार हैं, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा शेर, बहुत बढ़िया सी पंक्तियाँ आई थी गोपालदास नीरज के बारे में, हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपालदास नीरज मेरे को मेरे पापा को सबसे पसंदीदा कवि हैं, उनके कई कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। जी बिल्कुल। गुलजार के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुलजार ने एक नायाब तरीके से गाना लिखा है जो अपने आप में संगीत का अनूठा गीत बन गया है, जिसमें दो अंतरे में एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इस गीत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे अंतरे में सिर्फ शब्दों की जगह भूतकाल और वर्तमान काल का प्रयोग का प्यार को उभारा गया है, और वो गीत है वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़िया बात आपने, बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्वप्न झरे फूल से गीत शुभे चूल से, जी वही कारवां गुजर गया गीत सबको बड़ा पसंद है। ये जो गीत है, इन सब गीतों के साथ में एक बढ़िया सा शेर आया है कि गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रोमानियत भरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियानी की पंक्तियां लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपालदास नीरज, मम्मी वहाँ पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी, और इतनी ज़बरदस्त फ़ैन हुई कि उन्होंने मुझे झरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं, और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं, परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, सच बात है। अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल मेरा कुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है, कैसे लिखते होंगे ज़रा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं, पर इस सब के साथ में आप बताइएगा मजरूर सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको मजबूर कर देती है बस पर बस ही उनको सुनने के लिए या उनको समझने के लिए, ज़रूर से बताइएगा। तब तक सुनते हैं ये वाला गीत।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत, हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने केएल सहगल के ज़माने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया। नौशाद, एसडी वर्मन, ओपी नैयर से होते हुए आरडी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है कि लेखने के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहाँ सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल,

मजरू सुल्तानपुरी कुंदनलाल सहगर के से लेकर सोनू निगम जी तक, सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने। बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जवां जवां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरूह, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरूह के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है, बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सवा मांगे माफा में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया, लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार, पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं। और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं बख्शी की, आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा प्यारा सा, जिसे लिया था फिल्म, जो कि है फिल्म बालिका वधू से। और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव बर्मन है। और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे संदेश आए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी की हालात से कभी समझौता नहीं किया। बंदूक में कलम को देखा, शेरो शायरी के फन को जिंदा रखा। बंदूक में कलम को देखने का मतलब है वो एक सैनिक थे और उसके बाद शायरी की दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबाँ पर हैं। देखिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर पंडित, नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, DN मधोक, शकील बदायूनी, समीर अनजान, निशात कामिल, मनोज मुंतशिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैरी, हसन कमाल, जानेसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम पंकज, केदार शर्मा, वर्मा मलिक, अभिलाष गौहर, कानपुरी रवि, कुमार बाराबंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है, परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज की इस कार्यक्रम सुरीला सफ़र का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं। कभी और किसी दिन सुनाएंगे, पर आज का आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है सुरेश वाडकर की आवाज़ में, इलैयाराजा का संगीत है। आइए सुनते हैं इस गीत को, आज्ञा दीजिए। शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, खुशियाँ आई हों तो बहुत सारी बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो।

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country till tomorrow. IMD has also predicted thunderstorms, accompanied by hailstorms at places over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad and Uttarakhand today. The Met Department said heatwave conditions are very likely to prevail over Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Vidarbh till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद।

0: दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस

0: एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है. जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे. यह समझौता अब पुराना हो चुका है. कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो. 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा. भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया. इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न. श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर. दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा. भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया. पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की. आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी. इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
5: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर. दोपहर के 2:30 हुए हैं. आपसे लेकर दोपहर 3 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा.

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में, प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से, मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत। परिवार फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत ऐसी चंद तपन दिग्दिग्नाथ राम तत राम तत राम तत राम तत।

ले कि मृदंग ठनका झट झट झट झट नागिन तेज तेज सगन नदादा किट झट झट झट झड़न मचिक सग सगन का किट सटिक सग सगन का जी सगन नदा साधा किट सग सगन का साधगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ यथ यथ साथ यथ यथ साथ यथ यथ।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड।

0: पर आ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत भाई भाई फिल्म से, ये गीता दत्त की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप सबका मंगल हो। प्रणाम, नमस्कार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देश भर में 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। ये राशि लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। विकसित भारत रोजगार योजना अगस्त 2025 में शुरू हुई थी और अब तक देश भर में 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 30% महिलाएं हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रदेश के 6,099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता प्रदान करेगी। शिमला में स्वास्थ्य विभाग की एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अवसंरचना व सेवाओं को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले दिनों में वे

0: विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा कर डॉक्टरों के साथ संवाद करेंगे और आधुनिकीकरण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा मशीनरी व उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों की सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के हर नागरिक के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को पाने का एक उपयुक्त माध्यम बनाया जाना समय की मांग है। नई दिल्ली में आज 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसे आज की जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थित रूप से अपडेट किया गया है। अमित शाह ने कहा कि ऐसे कई जटिल मामले हैं जिन्हें इस प्रणाली के माध्यम से सुलझाने में मदद मिली है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के हर चरण, जांच और अभियोजन से लेकर अंतिम सजा तक तकनीक को प्रभावी ढंग से शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ये कर्मचारी प्रदेश के अनेक स्थानों पर अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग कर रहे हैं। नाहन में भी इन कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एचआरटीसी चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले लगभग 75 महीनों से उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है और मेडिकल भत्तों के रूप में भी लगभग 20 करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया हैं। संघ ने राज्य सरकार व निगम प्रबंधन को कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिए 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है।
2: 3.5 साल बीत गए, इस सरकार ने निगम के कर्मचारियों का सिर्फ शोषण किया। निगम के कर्मचारियों को सैलरी टाइम की नहीं है, 75 महीनों का ओवरटाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है इन्होंने आज तक नहीं दिया। 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट बनता है जो कि 4 साल का है, इन्होंने वो नहीं दिया। 4 वर्दियां हमारी ड्यू है वो ये देते नहीं। 8 महीने से प्रमोशन बंद है वो ये करते नहीं। सैलरी तो हर महीने हमारा राइट बनता है, उसको भी लेट रिसीव करते हैं।
0: केंद्र सरकार 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए देश भर में 100 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों की तैनाती करेगी। ये क्षेत्रीय अधिकारी राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और जमीनी स्तर के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। इससे कार्यान्वयन आवश्यकताओं को समझा जा सकेगा और क्षमता निर्माण प्रयासों में सहयोग दिया जा सकेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए जिसका विषय है केंद्र सरकार के 12 साल विश्वास, विकास व जन कल्याण के। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
0: भारत की विशाल और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत, हजारों वर्षों के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को अपने भीतर सहेजे हुए है। इसका संरक्षण हमारे राष्ट्र की विशिष्ट सभ्यागत पहचान को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, विकास और संवर्धन पर विशेष बल दिया है। देश भर में इस विरासत को सुदृढ़ और संरक्षित रखने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। प्रमुख पहलों के अंतर्गत प्रतिष्ठित स्थलों के जीर्णोद्धार, पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने, प्राचीन मंदिरों और स्मारकों के संरक्षण तथा विरासत नगरों व तीर्थ सर्किटों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरोद्धार के लिए संचालित कार्यक्रमों ने भारत की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने के साथ साथ आम जनता की पहुंच और पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ावा दिया है। साथ ही विरासत स्थलों के आसपास संपर्क सुविधाओं, शहरी नवीनीकरण, डिजिटल पहुंच और पर्यटन अवसंरचना में किए गए निवेशों ने स्थानीय आर्थिक विकास तथा रोजगार

सृजन को बढ़ावा दिया है। विरासत आधारित विकास परियोजनाओं ने सतत पर्यटन को प्रोत्साहित किया है, साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित किया है ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रह सकें। भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य स्मारकों, पुरावशेषों, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध है। ये केवल अतीत के अवशेष भर नहीं है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी साझा स्मृति और निरंतरता को दर्शाते हैं। वर्ष 2014 से सरकार ने इन सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए

0: इसके अतिरिक्त विरासत संरक्षण को पर्यटन, आजीविका संवर्धन और सांस्कृतिक कूटनीति के साथ उत्तरोत्तर रूप से एकीकृत किया गया है। सितंबर 2017 में प्रारंभ और सितंबर 2023 में पुनर्गठित विरासत को अपनाएं 2.0 कार्यक्रम निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और सोसायटियों के साथ सहयोग के लिए एक सुदृढ़ रूपरेखा तैयार करता है। ये राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों पर आगंतुकों के लिए अनुकूल सुविधाओं का विकास और रखरखाव बनाए रखने पर फोकस करता है। इसके लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अन्य प्रकार के योगदानों के माध्यम से मदद प्रदान की जाती है। इस पहल का लक्ष्य आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। मार्च 2026 तक विरासत को अपनाए 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 30 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। प्रसाद योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में की गई थी। ये योजना पूरे भारत में तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थलों को विकसित करती है। ये बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा तथा आगंतुक सुविधाओं को बेहतर बनाती है। फरवरी 2026 तक मंत्रालय ने प्रसाद योजना के अंतर्गत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 54 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 1,726.74 करोड़ है। इन 54 परियोजनाओं में से 32 परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूरी की जा चुकी हैं। सोमनाथ प्रोमेनेड विकास परियोजना की लागत 47.12 करोड़ रुपए है। सोमनाथ अब एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप प्रसिद्ध है। इसी प्रकार केदारनाथ प्रसाद परियोजना ने पूरे केदारनाथ सर्किट में तीर्थ यात्रा सुविधाओं, पहुंच, स्वच्छता, आगंतुक सेवाओं और पर्यटन अवसंरचना में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। आईआईएम रोहतक ने अपनी 2021 की रिपोर्ट केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रसाद का मूल्यांकन में इस योजना की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। 2014-15 में प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना थीमेटिक टूरिस्ट सर्किट में पर्यटन अवसंरचना के एकीकृत विकास की प्रमुख योजना रही है। ये योजना विरासत, आध्यात्मिक, तटीय, मरुस्थलीय, बौद्ध, जनजातीय तथा इको पर्यटन से जुड़े गंतव्यों को कवर करने वाले एकीकृत पर्यटन सर्किट का विकास करने पर केंद्रित थी। कुल 5,290.33 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 76 पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला अहिल्या नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए है अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो को सभी चैनल में सुनती हूँ,
0: अच्छा
1: जब मौका मिलता है ना तभी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए, आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहां जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है, जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है। दरअसल ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो
1: जी।
0: पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जो कदम रखते हैं वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ बताइए, हम किनसे बात कर रहे हैं इस समय, कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से। मैडम जी,
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: मैडम
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं। मैडम
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी, यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी डाला जाता है। खाने के अलावा जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल। उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर, फिर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है? वहां बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है।
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ, कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि
1: हाँ
0: धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं, डम डम डिगा डिगा मौसम बीगा बीगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह कि सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
1: हेलो सहेली
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
2: जी मैं झांसी से बोल रही हूँ, रत्ना।
1: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
2: जी
1: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
2: बस मैं घर पे ही रहती हूँ।
1: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है।
2: जी मैम।
1: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
2: जी मैम, मेरे तो 20 साल हो गए मेरी शादी को।
1: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी?
2: जी मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए तो इधर ही रहती हूँ।
1: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
2: मुझे शाहजहान फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: सखियो अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
1: अभी। हाँ छोड़ा है मैंने अभी, मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके, तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है
1: जी 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है तो बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं, खास तौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके
1: अभी
0: अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी अभी स्टार्ट किया है। हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है तो उस पर चढ़ना ही अपने आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं। तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
0: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
0: निकिता जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
0: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैम, मैं पलक अहरवार बात कर रही हूँ।
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से कॉल
1: भुगावली।
0: लगाया? अपने शहर का नाम बताइए। बुगावड़ी।
1: यस मैम,
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वहीं तहसील खुरई पे साइड है भुगावली।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है, वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के
1: ओ,
0: लिए?
1: तो यहीं से है पथरिया, तो वहीं पर पढ़ती हैं।
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: साइकिल 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
1: नहीं
0: की?
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं।
1: हाँ मैम,
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: अभी 1 साल पहले। यस
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: मैम,
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम,
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस

0: कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
1: और आपके शौक क्या क्या हैं?
0: मैं मुझे सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना और मतलब सॉन्ग को गाना। मैम मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
1: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है? अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहाणे है।
0: प्रतिभा रहाणे जी, आप कहाँ रहती हैं? किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योगाश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलेंटियर जाती हैं,
1: हाँ,
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग।

0: तो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत प्राणायाम करने लगते तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, तो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते तो अंदर से खुश होते हैं।
1: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है।
0: हाँ,
1: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
1: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियाँ जिन्हें अभी और इंतज़ार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हों, अगली बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियाँ जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हम

हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं

हेलो सहेली के अगले अंक में सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400024662, एक और नंबर है

0: ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
4: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थीं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फ़ोन करके तैयार रहने की

याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुँच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

0: अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी, बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।
1: जिंदगी कैसी है पहेली,

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीज़ों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहाँ, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

फिर तो मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फ़ोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबरा कर उसने उनका फ़ोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन की चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप ना तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 2-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया, मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर माँ, मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

0: अनुभा ने रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतज़ार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज़ देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?
1: हाँ जी।

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर

और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभव की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़पकर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई ना कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा का फोन नंबर दो,

मैं बात करता हूं, पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो? वो भी अपने ही पापा को। कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था, वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता, तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुँचता ही होगा। अनुभा की आवाज़ को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो, उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेटकर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और

जबरदस्त बड़ी छोरी जबरजात बड़ी बाधा इसने जूते का जो फीता फिर गीता बनी चीता इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से ये धाड़ से पछाड़ गई जो भी था उखाड़ ना उखाड़ गई जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी तने चारों खाने चित कर देगी।

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज़्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है इस चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी,
2: हाँ,
3: आपके नाम?
4: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या?
4: आरबीआई कहता है।
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना

FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:06 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 5:10 पर विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में रोजगार मेला 2026 के शुभारंभ का सजीव प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। युव मंच ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। सफर सुहाने गाने नए पुराने इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 6:05 से। खेती बाड़ी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर। शाम 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। पर सुनिए भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर रिले किए जाएंगे आकाशवाणी शिमला से। रात 8:00 विशेष कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। पर समाचार संध्या और 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे केंद्र से रिले होंगे। रात 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। चांदनी रातें इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 10:30 से 11:00 तक। देर रात 11:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं ये थी जानकारी आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जहाँ से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लानरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: या द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड ऑलरेडी इज इन विज्ञान भवन एंड इज इन अ सेपरेट हॉल वेयर इज हैविंग अ टॉक अ डिस्कशन विद द बेनिफिशियरीज हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड टुडे फ्रॉम दिस this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in, say, in a short while, he'll be entering the plenary hall, wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses. And of course, they are flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they are numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs. And it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
2: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क। व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। व्हाट अ एनकरेजमेंट टू द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस। एंड देन द transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
2: आती है. पीपल विल फील सिक्योर, ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, बट लेट दिस प्राइम मिनिस्टर इज गिवन देम एन अश्योरेंस दैट द गवर्नमेंट इज देयर विद यू. दैट इज व्हाट ही सेज इन दिस मोटो. नो रोजगार या कारोबार साथ है
1: भारत सरकार. जी. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा. और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है. जी.
2: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli bar naukri mili
1: hai.
2: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees, and the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल सभी को फायदा है. बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा. और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं. और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्ता गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है,
2: yes. है ना? See, and then, one more thing, see, the Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs.
1: Hmm.
2: It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं?
2: That's true.
1: आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. चार श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
2: Yeah, that's true, that's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years.
1: Hmm.
2: But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years.
1: Hmm.
2: Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 saal.
2: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
2: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा

0: हाल आप तक पहुंच रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हों।
1: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is social security for all.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ।
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे। योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है।
1: yes.
0: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे। इसका आपने जिक्र भी किया था।
1: Has been to generate more than 3.5 crore jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध, और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा। ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020। 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
1: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, when the money will go to 15 lakh people into their accounts. And they'll be getting their letters. And it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know. Just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world. I mean, we have advanced. They have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country. And the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think. Almost 700 people are seated over here. Right up to the top.
0: Jitni capacity hai, puri bhari hui hai.
1: It's full. Not a single seat is empty. People are... They're all job seekers, and most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to the phone that they've got their letter.
0: An amount will be transferred.
1: Yeah.
0: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो, दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
0: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे. और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
1: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हु आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग यू नो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप. And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The union minister, he'll give the welcome address, and then the prime minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button, the magic button.
0: Magic button.
1: Yeah, that's the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech, because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
1: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board. On the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, It's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something. You've got a future.

0: स्टेडियम कैसे भरा
1: यस
0: रहता था और
1: या
0: बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे. और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था
1: या
0: बच्चों में, और
1: यस
0: बच्चों को लगता था परीक्षा, अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना. तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उससे जुड़ जाते हैं, और आज भी
1: यस
0: युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं. तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के आ जा रहे हैं यहाँ से.
1: यस एंड वन मोर थिंग, यू नो, व्हेन ही टॉक्स टू द स्टूडेंट्स, यंग पीपल, व्हेन ही टॉक्स टू देम इन सच अ फ्री मैनर, यू नो. एंड इवन द चिल्ड्रन, दे फील सो कंफर्टेबल, द यंग पीपल ऑल्सो फील कंफर्टेबल, फॉर नॉट ओनली यंग, यू नो, ओल्ड पीपल whom so he talks to, he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and he mingles with them, and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take your, he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
0: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है, फिर
1: यस
0: तो राह रुकेगी नहीं, आप जहां जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी,
1: या
0: है ना.
1: एंड सी हु एक्सपेक्टेड दैट 3.5 करोड़ पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन इंडिया, राइट? द इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, 15 लाख हैव ऑलरेडी गॉट इट टुडे, दे विल बी, इट विल बी कंफर्म फॉर देम थ्रू द प्रेस ऑफ दैट बटन बाय द प्राइम मिनिस्टर. एंड देन ओवर द ईयर, मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3.5 करोड़ पीपल इन इंडिया विल बी एम्प्लॉयड, दे विल बी हैविंग द जॉब अंडर दिस विकसित भारत रोजगार योजना, द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना. एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यू नो, दे हैव ऑलवेज, द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दे हैव ऑलवेज कैरिड आउट दीज रोजगार मेलाज, यू नो, इवन इन द पास्ट. सो थ्रू दैट दे हैव जनरेटेड सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड एनी जॉब्स. एंड दो दे गेट अ मीगर अमाउंट, सम गेट वेरी मीगर अमाउंट, सम गेट अ गुड जॉब, बट इट हेल्प्स देम, एटलीस्ट दे डोंट स्टार्व, दे हैव, दे गेट अ टू मील्स अ डे, they're able to earn enough to get 2 meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
0: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा, अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही
1: बिल्कुल
0: होती
1: बिल्कुल
0: हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
1: यस
0: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार.
1: सरकार.
0: जी
1: सो इन फैक्ट द पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ अस, यू नो, देर आर डेफ एंड डम पीपल ऑल्सो ओवर हियर, एंड देयर इज वन पर्सन,
0: ट्रांसलेट किया
1: या,
0: जाए.
1: इज ट्रांसलेटिंग थ्रू एक्शन. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is say, and when the words, you know, when the words come, he's translated through his actions, you know, and it's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people; they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today. Yeah.
0: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
1: यस
0: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतज़ार तो कुछ ही पलों का है, ज़्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं
1: Yeah, I think everything has stopped. They are all in attention, and I think the Prime Minister is arriving with the other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais, and once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who'll be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived. He has entered. And is entered.

0: and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
1: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
2: एक बार
1: जोरदार तालियां हो जाए। देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
2: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का
1: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
2: मैं मन्नत भाटिया
1: और मैं जयवर्धन गोयल,
2: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत।
0: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the desk.
2: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
1: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
3: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
1: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
2: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
0: And now the welcome remarks
1: जोरदार तालियां हो जाएं।
0: by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए चार महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड, आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी

0: माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है। और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1,00,000 करोड़ नहीं हो रहा है मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1,00,000 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है, उसका फलस्वरूप आज देश के 15,00,000 एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2,400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार।

0: है भारत सरकार।
1: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
2: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
3: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
1: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
3: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
2: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
3: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
2: डाइस पर
4: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है, और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है,

फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था, उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया, उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा

0: कम हुआ।
1: एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल्ड टैलेंट होगा। जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
0: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में रोजगार मेला 2026 के शुभारंभ का सजीव प्रसारण। हम आकाशवाणी हमीरपुर से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
8: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
9: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
10: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
1: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 होने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल अंशु जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
2: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से

0: राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की, एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथेलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओइस तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट्स थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट्स थे सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
2: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट EU ने साइन किया है। अब इस FTA के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ, उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ, जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में, विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसका पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर हैं। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है।
1: जी
0: हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहाँ पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था और जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहाँ पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफ़ी ढीलपना आ गया, अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफ़ी बार सफल हुए। मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफ़ी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से, पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाई रोड जाना पड़ता, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफ़ी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफ़ी लाभ पहुँच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफ़ी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफ़ी तादाद में फोर्सेस पहुँच रहे हैं वहाँ पर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर कई जिलों में जहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहाँ पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहाँ से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
2: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफ़ी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
0: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतरराष्ट्रीय मंचों में है वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं। इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो यूएनएससी जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है, और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके

0: अपना तेल, गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया, और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40 से 60 70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: श्रोताओं, भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर अभी आप विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी हमीरपुर से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर 7:45 होने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
0: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से सृजित हुए 70 लाख रोजगार। डीबीटी के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को वितरित की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का किया आह्वान। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने केंद्र से टीबी मुक्त हिमाचल का लक्ष्य हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव टालने का लगाया आरोप। और 21 जून को होगी नीट परीक्षा। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करेगा राज्य परिवहन निगम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कुछ युवा लाभार्थियों से संवाद भी किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से अब तक लगभग 70 लाख रोजगार सृजित हुए हैं और युवाओं को सामाजिक सुरक्षा कवच मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनका कौशल विकास किया जा रहा है।
1: योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहाँ कुछ लोगों को काम दिया है। इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है।
0: इधर शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण हुआ। इस मौके पर प्रदेश के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से

0: अधिक की राशि वितरित की गई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि सांसद सुरेश कश्यप ने भी समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने आज विश्वविद्यालय में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने मल्टी फैकल्टी भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सीबीटी लैब का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने 8.25 करोड़ रुपए से बनने वाले नए अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्वच्छ व हरित ऊर्जा को हवा देने के लिए काम कर रही है और सोलन जिले के नालागढ़ में प्रदेश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन योजना स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश विश्वविद्यालय को इस दिशा में नए शोध करने चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर आज नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से टीबी मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। शांडिल ने बताया कि टीबी उन्मूलन की दिशा में हिमाचल तेजी से आगे बढ़ा है और उच्च जोखिमों वाले गांवों में संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग, एक्सरे जांच और टीबी मरीजों की देखभाल जैसे मापदंडों में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले में ठियोग क्षेत्र के बगैण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक और राजकीय प्राथमिक स्कूल के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इन पर 1.12 करोड़ रुपए की लागत आई है। रोहित ठाकुर ने बताया कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया है और पहले चरण में राज्य के 151 स्कूलों में ये पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में बगैण स्कूल को भी CBSE से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े 15,000 पदों में से 9,000 पद भर दिए हैं, जबकि अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों को टालने का आरोप लगाया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत हुई है और जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 12 जिलों में से 10 में भाजपा अपने जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार हार के डर से इनके चुनाव नहीं करवा रही है।
1: वर्तमान कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है, उसका जनादेश आया। अरे जब पार्टी का पदाधिकारी चुनाव लड़ता है, पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, तो वो अपने आप में एक सिंबल की तरह ही देखा जाता है। चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने जिताया। आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद में से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। जिला परिषद में जहां भाजपा का बहुमत है, वहां डेट नहीं दी जा रही है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव। जहां ब्लॉक समितियां भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर ज्यादा हैं, वहां पर डेट नहीं दी जा रही है ब्लॉक समिति के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए।
0: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने किशाऊ बांध और रेणुका बांध जैसे मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया था और उसी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री इसका बेवजह श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।
1: जितना प्रभावी ढंग से हमने हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा है, शाव डैम को लेकर के, रेणुका डैम को लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर के, वही आधार बना, उसी बात को लेकर के उन्होंने अपना पक्ष आगे रखा और धन्यवाद उनको करना चाहिए केंद्र की सरकार का।
0: राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपनी साधारण बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। निगम के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि अपने घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और उसके बाद घर लौटने के लिए परीक्षार्थी निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे।

0: ये रियायत 20 जून से 22 जून तक मान्य रहेगी। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ये कर्मचारी प्रदेश के अनेक स्थानों पर अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग कर रहे हैं। नाहन में भी इन कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एचआरटीसी चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले लगभग 75 महीनों से उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है और मेडिकल भत्तों के रूप में भी लगभग 20 करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है। संघ ने राज्य सरकार व निगम प्रबंधन को कर्मचारियों की मांगे पूरी करने के लिए 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है।
1: साढ़े तीन साल बीत गए, इस सरकार ने निगम के कर्मचारियों का सिर्फ शोषण किया। निगम के कर्मचारियों को सैलरी टाइम की नहीं है, 75 महीना का ओवरटाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है इन्होंने आज तक नहीं दिया। 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट बनता है जो कि 4 साल का है, इन्होंने वो नहीं दिया। चार चार वर्दियां हमारी ड्यू है वो ये देते नहीं। 8 महीने से प्रमोशन बंद है वो ये करते नहीं। सैलरी तो हर महीने हमारा राइट बनता है, उसको भी लेट रिसीव करते हैं।
0: राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में अनुकंपा के आधार पर 3 लोगों को नौकरी प्रदान की गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इन लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। राजेश शर्मा ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर दी गई नौकरी दुख की घड़ी में 3 परिवारों का सहारा बनी है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। राज्य सरकार ने 100% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में लगभग 7,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला में दृष्टिबाधित एसोसिएशन और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से सृजित हुए 70 लाख रोजगार, डीबीटी के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को वितरित की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का किया आह्वान। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने केंद्र से टीबी मुक्त हिमाचल का लक्ष्य हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव टालने का लगाया आरोप। और 21 जून को होगी नीट परीक्षा, परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करेगा राज्य परिवहन निगम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर FM बैंड 101.8 MHz पर।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजे हैं, अब हमारा विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: पूरे होने के इस विशेष अवसर पर आकाशवाणी के स्टूडियो में आज हमारे साथ ऐसे सम्मानित श्रोता उपस्थित हैं जो वर्षों से रेडियो और आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं। इन्होंने रेडियो के स्वर्णिम दौर को बहुत ही करीब से महसूस किया है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी यादें, अनुभव और आकाशवाणी से उनका भावनात्मक रिश्ता। ये श्रोता हैं बोधराज वर्मा जी। वर्मा जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: बोधराज वर्मा जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए और हमें ये बताइए कि आकाशवाणी से आप कब से जुड़े हैं।
2: देखिए, मैं तहसील करसोग, जिला मंडी, गांव तलहन का रहने वाला हूं। मैं रेडियो से सन 1981 से जुड़ा हूं। हालांकि मैं दृष्टिहीन हूं, लेकिन जो रेडियो की जो ध्वनि है जो मेरे कानों में आती है, उससे मैंने काफी महसूस किया और मैंने इतनी प्रेरणा हासिल की कि मैं उन शब्दों को बयान नहीं कर सकता हूँ। और रेडियो मेरा एक बहुत बड़ा साथी रहा है जीवन में।
1: बोधराज वर्मा जी, आपने कहा कि रेडियो से मुझे काफी प्रेरणा मिली, तो जीवन में आगे बढ़ने की क्या प्रेरणा मिली आपको रेडियो से?
2: आगे बढ़ने की, जैसे पहले तो बालपन था जी, मेरा बालपन। उसके बाद जब मैंने होश संभाला अपना, तो जब मैं रेडियो सुनता रहा तो मैं प्रेरित होता रहा, रेडियो से प्रेरित होता रहा। और माता पिता से तो प्रेरणा मिली, पर रेडियो ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। जब मैं कुछ रेडियो से सीखा, फिर मैं स्कूल चला गया अंध विद्यालय में, वहां भी पढ़ता भी था और साथ में वहां भी मैं रेडियो सुनता था। मुझे कोई रोक टोक नहीं थी कि भाई रेडियो मत सुनो आप।
1: जी बोधराज वर्मा जी, आपको याद है कि आकाशवाणी से आप कब और कैसे जुड़े और इस समय का अनुभव आपका कैसे रहा जब आपने पहला कार्यक्रम सुना?
2: जी देखिए, पहले के कार्यक्रम से आपको अवगत करवाता हूँ। जब से मैंने शुरू किया प्रोग्राम 1981 से, पहले आपके कार्यक्रम आते थे बच्चों के लिए, जैसे चुन्नू मुन्नू, बाल गोपाल, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और जैसे आपका आपकी चिट्ठी, आपकी फरमाइश कार्यक्रम आता, हमें लिखे कार्यक्रम आता था, विज्ञान और जीवन कार्यक्रम आता था। उन प्रोग्रामों को मैं सुनता था और नाटक भी ऐसे ऐसे प्रसारित होते थे कि जी करता कि नाटक जो है समाप्ति ना हो। आपको मैं बात बताऊं, एक बार कला ठाकुर जी का इंटरव्यू था रेडियो पे, उनसे पूछा गया था कि भाई शायद आपने 500-600 नाटकों में लगभग भाग लिया होगा। फिर कला जी ने कहा कि आप 500-600 नाटकों की बात कर रहे हैं, मैंने कम से कम भी कोई 7-8 हजार नाटकों में भाग ले रखा है। उस वक्त कार्यक्रम प्रसारित होते थे आपके चुटकुले, आपके गीत, चित्र ध्वनि, इस सभी कार्यक्रमों को मैं सुनता आ रहा हूं और पसंद भी करता। हालांकि वो प्रोग्राम थोड़े लुप्त हो चुके हैं, प्रसारित नहीं होते हैं, तो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि उन प्रोग्राम का प्रसारण भी होना चाहिए, क्योंकि उन प्रोग्राम में बहुत दम था, बहुत ताकत थी उन प्रोग्रामों में।
1: बोधराज जी, आपको आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम उन दिनों पसंद आया करते थे?
2: उन सभी कार्यक्रम आते, जैसे मेरा एक प्रिय प्रोग्राम था सैनिकों के लिए, और क्या नाम, सुबह वंदना आता, अब भी आता है वो, और उन प्रोग्रामों को मैं सुनता हूँ। जैसे बाकी तो जैसे सुनहरी किरणें, कृषि जगत, आपका धारारी गीत, सुगम संगीत और हिमदर्शन कार्यक्रम, ये पहले से चलता आ रहा है। आपका जो एक कार्यक्रम आता था मंद भावन, गीत पहाड़ा रे, ये कार्यक्रम सुनता रहा और इन प्रोग्रामों में इतना आनंद आता था कि मन खुशी से बाग बाग हो जाता।
1: और जैसे कि अब आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आप क्या इस सफर को कैसे देखते हैं?
2: अच्छा लग रहा है जी, इसमें भी बहुत अच्छा, आगे के जो आपके प्रोग्राम है बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे आप बजाइए, नए गाने भी बजते हैं, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जैसे नए श्रोता भी आपके जुड़े हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं इतना भी आपको बताना चाहता हूं कि पुराने श्रोता भी हजारों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से अभी भी है जो प्रोग्रामों को सुनते हैं। ये नहीं है कि रेडियो को नहीं सुनता, कि क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि आप खेत खलिहान में भी सुन सकते हैं, पशुओं के साथ भी सुन सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात यदि आपको बताऊं, गांव तहसील करसोग की और जिला मंडी की, तो यदि भेड़ बकरियों के पास जाएंगे लोग और पशुओं के पास जाएंगे तब भी क्या नाम बैग में रेडियो डाल के ले जाएंगे। और मैं अपनी बात बताता हूँ कि यदि एक दिन मैं रेडियो ना सुनूं तो मैं रेडियो से बगैर बेचैन हो जाता हूँ।
1: बोधराज जी, जैसे आपने कहा कि पुराने गीत भी बजने चाहिए
2: जी,
1: तो पुराने और नए गीत दोनों हमारे रेडियो से आकाशवाणी शिमला से आप सुनते आ रहे हैं। ये होता है कि अब नई पीढ़ी का भी कुछ ध्यान हमें रखना पड़ता है,
2: रखना पड़ता है
1: ना। जो पुराने श्रोता है, जो नई पीढ़ी हमारी आ गई युवा है, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो तालमेल तो बनाकर चलना पड़ता है, तभी आकाशवाणी आगे बढ़ पाएगी।
2: बिल्कुल जी, तालमेल आगे चलना चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जब पीसी में और एफएम में क्या नाम बढ़िया कार्यक्रम चलते हैं तो मैं दोनों रेडियो को चलाता हूँ। लोग हैरान होते हैं कि भैया दोनों रेडियो के, यार आप कैसे हैं, दोनों रेडियो को कैसे सुनते हैं। मैंने कहा एक कान में एक रेडियो, दूसरे कान में दूसरा रेडियो, क्योंकि मुझे आनंद आता है, क्योंकि रेडियो ने मुझे इतनी बड़ी प्रेरणा दी कि रेडियो को मैं तब तक सुनता रहूंगा जब तक मेरे सीने में सांस रहेगी।
1: और रेडियो से जानकारी भी मिलती रहती है,
2: अधिक जानकारी। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब मैं स्कूल नहीं गया था तो मैंने बहुत सारी जानकारी रेडियो से प्राप्त की, और ऐसे ऐसे कलाकारों को मैं रेडियो से सुनता रहता था, जैसे परशुराम तोमर जी, हेतराम तनवर जी और अन्य जो कलाकार हैं, शिवशरण ठाकुर जी, तो अन्य जो कलाकार हैं क्या नाम, उनके गाने सुनता था। और साथ में देखिए आपका ये कार्यक्रम चलता है गांधी चर्चा, मैं डॉक्टर हुकम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि डॉक्टर साहब, उनका जो एक कहानी आती है एफएम से भी आती है, कहानी मुंशी प्रेमचंद की
1: जी
2: की, उनको भी मैं बड़े लगन से सुनता हूँ। और एक सुझाव भी देना चाहूंगा, जैसे आपका गुड मॉर्निंग हिमाचल आता ना
1: जी जी,
2: तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा नाम है। कि मैं सोचता कि सप्ताह में दो दिन ऐसे रखे, एक कार्यक्रम पुरानी फिल्मों का होना चाहिए और उस प्रोग्राम का नाम जो है सूरज के साथ साथ रहना चाहिए। और इसके साथ मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि मैं विविध भारती से भी प्रोग्राम सुनता हूँ, वो क्योंकि आप जानते हैं कि वो भी आकाशवाणी का एक केंद्र है, रविवार को प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम का नाम है उजाले उनकी यादों के। तो उस प्रोग्राम में जो फिल्मी गायक कलाकार गीतकार संगीतकार आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज भी हमें मतलब सुनने को मिलती है वहां से, तो गौरव होता है इस बात का। तो मैं समझता हूँ कि यदि आकाशवाणी शिमला से भी ऐसा एक कार्यक्रम प्रसारित हो तो चार चांद लग जाएंगे और पुराना जमाना शायद एक बार फिर लौट के आ जाएगा, और उस प्रोग्राम का नाम जो है पुराने गीत पुरानी यादें रहना चाहिए।
1: जी बोधराज वर्मा जी, आपके अनुसार आकाशवाणी के लोक संगीत संस्कृति और बोलियों को आगे बढ़ाने में क्या योगदान रहा है?
2: पहले तो बोलियों के कार्यक्रम जो होते थे, जितने भी बोलियों के कार्यक्रम है, उसमें पहले भिंट वार्ता के लिए लोगों को बुलाते थे उस टाइम तो, और उस टाइम जो कार्यक्रमों की जो रूपरेखा दी जाती थी उस वक्त बताया जाता था उसमें कि भाई इस बोलियों के कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में आप ये चीज सुनेंगे। लेकिन आजकल वो सिलसिला थोड़ा कम खत्म हो चुका है, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, तो बोलियों के कार्यक्रम भी आपके बहुत अच्छे हैं। और जब मैं हेलो डॉक्टर की बात करता हूँ, लोकवाणी की बात करता हूँ, तो मैडम सपना जी और डॉक्टर हुकम शर्मा जी दोनों इस प्रोग्राम को पेश करते हैं। जब इस प्रोग्राम को पेश करते हैं तो बाग बाग हो जाता है, और मैं तो आप सुनते ही होंगे कि मैं तो हर एक प्रोग्राम में फोन करता हूँ, और ऐसे भी जब अच्छा प्रोग्राम होता है, जब रेडियो के सुबह प्रोग्राम होते हैं, तो मैं डिप्टी रूम को दूरभाष करता हूँ, डिप्टी रूम वाले मेरा फोन सुनते हैं। और रहा नहीं जाता, पहले तो आप जानते हैं कि पत्रोत्तरी कार्यक्रम था, अपनी प्रतिक्रियाएं जो पत्रों के माध्यम से भेजते, आजकल वो सिलसिला नहीं है। तो मैं श्रोताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे आप नियमित रूप से रेडियो सुनते हैं तो पत्र भी भेजिए रेडियो के लिए, ताकि वो पत्रों का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो जाए। हालांकि फोन इन कार्यक्रम चले हैं, अच्छी बात है, लाइव बात होती है, लेकिन पत्रों का जो मजा है वो अपना ही मजा है। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप लोगों के अधिक से अधिक पत्र आए, तो मैं नहीं समझता कि जो आकाशवाणी शिमला में जो अधिकारी महोदय जी बैठे हैं वो पत्रों उत्तरी कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, और हमारे मेरे शायद मेरे दिए हुए सुझाव पर जरूर गौर करेंगे।
1: अच्छा, आप हमें ये बताइए, आकाशवाणी से जुड़ी कोई याद या घटना जो आपके बहुत करीब रही हो?
2: बिल्कुल जी, घटनाएं तो काफी हुई है, वैसे तो मैं सुन के ही मैंने महसूस किया है, काफी काफी घटनाएं ऐसी है। देखिए जैसे मैं पुराने अनौसरों की बात करता हूँ, जैसे शांता वालिया जी, और वो भी हमारे बीच में नहीं है, कुमारी कला ठाकुर जी हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग जब थे आकाशवाणी शिमला में, तो उस वक्त तो चार चांद लग जाते थे। और मैं तो ऐसा था कि क्या नाम, नियमित रूप से सुनता था और अब भी सुनता आ रहा हूँ। मैं तो सच्ची बात बताता हूँ आपको, जब तक आप लोगों ने रात को 11 बजे जय हिंद नहीं, तब तक मैं लगातार सुचारू रूप से आकाशवाणी शिमला के तमाम प्रोग्राम को सुनता हूं और पसंद भी करता हूं जी।
1: बोधराज वर्मा जी, आकाशवाणी जन जन की वाणी रही है और आकाशवाणी की पहुंच घर घर तक रही है, जैसे आपने कहा कि खेत खलिहान तक भी आकाशवाणी की पहुंच रही है।
2: जी
1: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वर्षों से आकाशवाणी शिमला से जुड़े हैं, तो जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं या चलती आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है लोग इसका कैसे फायदा उठाते हैं?
2: देखिए जी, जब जानकारी आप रेडियो के माध्यम से देते हैं ना जी लोगों को, और लोग सुनते हैं उसको, तो लोग बहुत सारे आम पढ़े लिखे तो उठाते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उस जानकारी से अवगत होते हैं और उस जानकारी से बहुत बड़ा लाभ उठाते हैं वो लोग भी।
1: और जैसे कि आज के समय में, जैसे मोबाइल का समय है, इंटरनेट का समय है, तो इस समय आपको क्या लगता है कि रेडियो की क्या प्रासंगिकता है, क्या अहमियत है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है?
2: प्रश्न आपका बहुत सराहनीय है। हालांकि आज का देखिए, भले ही आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें लोग मगन है, लेकिन रेडियो रेडियो तो तब तक चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है, क्योंकि रेडियो का अपना ही आनंद है। मैं आज के कल के युवा पीढ़ी को भी मैं अवगत करवाना चाहूंगा कि भले ही आप लोग नेट देखते हैं, नेट में ना जाने कितने कार्य कुछ देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन रेडियो के लिए प्रोत्साहन जरूर दीजिए आप। यदि रेडियो को प्रोत्साहन देंगे तो अधिक से अधिक जो है प्रेरणा मिलेगी। यदि हम अपनी पुरानी संस्कृति को कायम रखेंगे तभी हमारी जो है पुरानी धरोहर है ये कायम रहेगी, नहीं तो निकट शीघ्र ही ऐसा समय आने जा रहा है कि कभी हमारी जो पुरानी संस्कृति है ये कभी ढूंढ के भी नहीं मिलेगी।
1: लोक संगीत को लेकर आकाशवाणी का क्या योगदान रहा है?
2: बहुत अच्छा जी, लोक संगीत में तो मैं जैसे प्राइमरी चैनल की बात करता हूँ मैं, इसमें भी जैसे आपका एक कार्यक्रम आता है पहाड़ी संगीत आता है 7:40-45 पे सवेरे, और आपका जो ये 2:30 बजे आता है हिमगुंजन, और ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। फिर धारा गीत कार्यक्रम आता है, ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और जैसे बोलियों के कार्यक्रम में गीत संगीत, तो ये पहाड़ी संगीत गाने जो सुनाए जाते हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब इसमें तो प्रेरणा मतलब प्रेरणादायक बात है ये, और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये कार्यक्रम अच्छे नहीं है। और जो उद्घोषक हैं आकाशवाणी शिमला में भाई बहन उद्घोष, उनकी अनाउंसमेंट भी बहुत अच्छी है और कार्यक्रम भी इतना अच्छा पेश करते हैं कि मतलब एक अपने मन में जो जागरूकता हो जाती है कि भाई मैं तो कहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग आकाशवाणी शिमला में बरकरार रहे, बहुत भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ।
1: बोधराज वर्मा जी, आप आकाशवाणी के लोक गायक भी हैं, तो दो पंक्तियां सबको सुनाना चाहेंगे इस अवसर पर?
2: बिल्कुल, दो दो लाइनें सुनाने जा रहा हूं मैं। बसना पहाड़ा रा चंगा, बसना

0: करी दें दे कलजू जो ठंडा, बसना पहाड़ारा चंगा, बसना पहाड़ारा चंगा ओ मित्रा, बसना पहाड़ारा
1: बहुत
0: चंगा।
1: बढ़िया बोधराज वर्मा जी, आज आपने अपने विचार, यादें और अनुभव आकाशवाणी शिमला के साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं, बल्कि करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं, संस्कृति और विश्वास की कहानी है। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर।
2: लॉग ऑन करें। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:18 और ये हुए पूरे 15 सेकंड। अब से लेकर 8:45 तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। फिल्म का नाम था तेरे नाम।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुधाकर शर्मा का लिखा गीत अभी आपने हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुना। स्वर कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के थे। फिल्म का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथी फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अनुमलिका संगीत है, जावेद अख्तर के बोल, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें फिल्म रिफ्यूजी के लिए।

सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में अभी आपने फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत सुना। जावेद अख्तर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के

0: हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए

0: सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon.

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात 10 बजे तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के थे। फिल्म का नाम था लैला मजनू। और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को फिल्म चरस में, शब्दकार आनंद बख्शी और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

0: दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृग्या के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नज़रअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।
1: Thank you.

मिथुन की कामयाबी में उनके फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना और ये फिल्म भी।

1980 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती,

0: दोस्तों, सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई, अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर, यम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
1: हाँ, यू आर इन लव।
0: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रा का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म दला

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दिन भर।
1: यह है आकाशवाणी हमीरपुर FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बजने को है, अब रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत CPRI में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है।
3: नमस्कार, आज शाम 19 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। इस योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई, जबकि सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रत्येक माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। इस योजना के तहत देश भर में 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया। इस क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा आज शाम CPRI यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के सभागार में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में एकत्रित लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित CPRI के राज्य

0: समारोह में प्रदेश के माननीय श्रम एवं रोजगार, उद्योग तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुरेश कश्यप, स्थानीय विधायक श्री हरीश जनार्था भी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में एकत्रित हुए गणमान्य व्यक्तियों तथा लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं, हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदी हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: शिमला CPRI में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने अध्यक्षीय संबोधन में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश के माननीय श्रम एवं रोजगार, उद्योग तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा,
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और इसका मकसद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो है वो रोजगार के साधन किस तरह से बढ़े, वो मकसद रहा है। और एम्प्लॉय को भी इंसेंटिव दिया जा रहा है, जैसे कहा है कि 15,000 रुपये दिया जाएगा और इसी तरह से जो एम्प्लॉयर है उनको भी जो है वो इंसेंटिव के रूप में जो इस स्कीम में किया गया है। और इस स्कीम का मकसद ये है कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन है वो एक अच्छा रिलेशन बने और रोजगार के साधन जो हैं वो बढ़े। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट से है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हर सरकारी क्षेत्र में इस वक्त नौकरियों में सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चाहे हमारे बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसमें नौकरियों की जितनी गुंजाइश है वो लगभग पूरी हो चुकी है। मगर इस स्कीम का मकसद ये है कि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के साधन बढ़े और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे उद्योग हैं, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो जो है वो बढ़े। हमने हिमाचल गवर्नमेंट ने तो हमने इसको पहले से इम्प्लीमेंट किया हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है। जैसे बहुत सारे हमारे कोड्स है, हमारे रूल्स हैं, हमारे एक्ट्स हैं, वो बहुत पुराने और आउटडेटेड है। लेबर एक्ट में भी जैसे हमने भी हमारे चार कोड्स हैं, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ये चारों कोड्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि लेबर लॉज बहुत सारे थे पहले, मगर वो सारे लेबर लॉज को ख़त्म करके ये जो चार कोड्स हैं जिसका मैंने भी जिक्र किया है, जिसमें सारे के सारी जो चीज़ें हैं, एम्प्लॉयज़ के हेल्थ है, एम्प्लॉयज़ के वर्किंग कंडीशन है, एम्प्लॉय की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चार कोड्स में लेकर के सम्मिलित किया है। और हम स्टेट्स को ये कहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हिमाचल गवर्नमेंट ने ये जो कोड्स हैं ये सारे के सारे नोटिफाई कर दिए हैं, पब्लिश कर दिए हैं। इनमें से दो कोड्स हमने फाइनली जो गजट में नोटिफाई कर दिए हैं और जो और फॉर्मेलिटीज़ है वो हम करने जा रहे हैं। हिमाचल गवर्नमेंट ने, हमने जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत लिमिटेशन थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, हमने जो वुमेन्स के वर्किंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए उनके आर्स भी बढ़ाए हैं। एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर हम हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हम ला रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के साधन जो है वो जो है उसमें बनाया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री है, इन टर्म्स ऑफ लेबर है, या इन टर्म्स ऑफ हेल्थ है, वो हिमाचल गवर्नमेंट जो है समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है, जो पैसा हमको आता है उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट्स जो है वो फ्लरिश तभी करेगा, स्टेट्स प्रॉस्पर तभी करेगा जब हम एक आपस में मिलकर के स्टेट्स है सेंटर है उसके अच्छे रिलेशन बने रहे। हमारी ये कोशिश रही है। यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यूनियन के भी लोग आए, आपको भी बधाई दूंगा, आपने भी जो अपने टारगेट्स हैं, आपने भी अपनी जो कोशिशें हैं स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आपने उस स्कीमों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करे हैं, मेरे ख्याल अब आप फैसिलिटेट भी करेंगे, तो मैं आप सबको हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से भी बधाई दूंगा। हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको एम्प्लॉयज़ को ये कहूँगा, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, किसी में भी अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी यूनियन को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, हमारे लेबर कमिश्नर हमारे वीरेंद्र शर्मा जी हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। मैं सेक्रेटरी में होता हूँ एज लेबर मिनिस्टर, अगर मेरे पास कोई भी आपकी दिक्कत समस्या जो होगी आप मेरे पास आओ, हमारे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों तथा अन्य गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए शिमला संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप ने कहा,
3: आज का दिन एक विशेष दिन है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत योग्य कर्मचारियों और एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव बेनिफिट्स देने के लिए हमारे मध्य वर्चुअली जुड़ रहे हैं। मैं विशेष रूप से इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 99,440 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का मकसद अगले दो वर्षों के दौरान देश में लगभग 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1.92 करोड़ लाभार्थी वे होंगे जो पहली बार नौकरी के लिए मार्केट में कदम रखेंगे। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित हुई नौकरियों पर मिलेगा। इस योजना के माध्यम से जो भी एम्प्लॉयर्स हैं नौकरियां पैदा करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका मकसद विनिर्माण सेक्टर पर खास ध्यान देते हुए अलग अलग सेक्टर में नई नौकरियां पैदा करने का लाभ देना है। यह रोजगार आधारित विकास के जरिए आर्थिक विकास को तेज गति प्रदान करने की दृष्टि से उठाए गए एक अहम कदम है। हम जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 के बाद लगातार किस प्रकार से इस देश के जो युवा हैं उनको स्वावलंबी बनाया जा सके, किस प्रकार से देश का युवा ना केवल अपने लिए रोजगार सृजित करे अपितु रोजगार देने वाला बने, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। हम सभी जानते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनके माध्यम से प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो यूथ है, यह लक्ष्य है कि इन युवाओं को ना केवल रोजगार उनको मिले अपितु वो लोग अपना कारोबार करके रोजगार प्रदान करने वाला बने। जहाँ 2014 में मात्र 350 स्टार्टअप होते थे, आज इनकी संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख हो गई है और करीब 30 लाख युवाओं को स्टार्टअप योजना के तहत जो है इसका लाभ मिला है। आज लगभग 30 लाख नौकरियां स्टार्टअप योजना के माध्यम से देने का काम हमारे युवा साथियों ने ही किया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। इस बात को हमने पिछले 12 सालों में देखा भी है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं, इस बात की भी हमको खुशी है। और जिस प्रकार से निरंतर जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो चाहे हम विकास की बात करें, विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं आज इस देश में लागू की गई हैं जिनका लाभ आम व्यक्ति को मिल रहा है। तो हर क्षेत्र में आज विकास हो रहा है और उसी दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जो सौगात देने वाले हैं, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस अवसर पर आप सबको भी बधाई देता हूं। जितने भी हमारे बंधु और पधारे हैं, आप सब लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्री हरीश जनार्था, माननीय विधायक शिमला शहरी क्षेत्र ने भी इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा,
4: आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला है और इस शुभ कार्य में माननीय प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे, उसको सुनने का मौका मिलेगा। और जो ये स्कीम है, इसके जो बेनिफिशरीज हैं और इसके जो एम्प्लॉयर्स भी हैं, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एज यू आर ऑल अवेयर दैट दिस इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO रीजनल ऑफिस शिमला टू डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंशियल इनिशिएटिव इंसेंटिव्स अवेलेबल अंडर द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना टू द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। यू आर ऑलरेडी वेल एक्विंटेड विद द की फीचर्स ऑफ दिस स्कीम। आई होप दैट मोर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज विल बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम इन द नियर फ्यूचर, thereby क्रिएटिंग न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन द स्टेट। आई होप that the EPFO Regional Office Shimla succeeds in effectively implementing this scheme across Himachal Pradesh. I extend my heartfelt best wishes to EPFO Shimla for the successful implementation of this scheme. Thank you.
0: कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों ने अपने विचार साझा किए और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा,
5: मैं श्रेया सूद पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाली युवा पीढ़ी को नौकरी पर रखने से प्रतिष्ठान को जहां उनके युवा कौशल का लाभ हुआ है, वहीं उनके रोजगार एवं कार्य प्रणाली में भी स्थिरता आई है, जिससे काम को एक निर्धारित अवधि में पूरा करने में सहायता मिली है। जैसा कि इस योजना के तहत लाभ 2 वर्ष की अवधि तक प्राप्त होंगे, इसलिए प्रतिष्ठान को नई भर्तियों पर बार बार किए जाने वाले खर्चों की बचत होगी। इस कारण आर्थिक लागत तथा कर्मचारियों के विस्थापन में कमी आई है। नए रोजगार सृजित करने से हमारा प्रतिष्ठान देश में रोजगार बढ़ाने एवं लोगों को रोजगार देने में सफल हुआ है। इस कारण से हम देश की आर्थिकी को रफ्तार देने में सहयोग कर पाएंगे तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मुहिम में योगदान देने में सफल रहेंगे। इस वित्तीय प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद।
6: मैं रवीना, मैंने दिनांक 8 सितंबर 2025 को नौकरी ज्वाइन की है। मैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की लाभार्थी हूँ। जैसा कि मैं पहली बार नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली हूँ तथा इस योजना के लाभ में मुझे जो राशि मिल रही है, उससे मुझे स्थापित होने में बहुत सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभार्थी होने से मुझे एक तो एक ही स्थापना में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और दूसरा नई नौकरी की खोज नहीं करनी पड़ेगी। नौकरी शुरू करने के समय ही इस प्रकार की वित्तीय सहायता मिलने से मुझे इस समय होने वाले खर्चों को वहन करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार के प्रोत्साहन से मेरे जीवन में स्थिरता आएगी, जिसके कारण मैं अपनी नौकरी के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व को भी पूर्ण रूप से निभा पा रही हूँ। मैं इस योजना के लिए भारत सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: ये थी शिमला के CPRI में आज आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की रेडियो रिपोर्ट। तकनीकी सहयोग रामचंद और प्रवीण, आलेख संपादन एवं स्वर डॉक्टर हुकम शर्मा, प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी शिमला से रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। यह है आकाशवाणी हमीरपुर FM बैंड 101.8 MHz पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अगर तुम ना होते, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी लता मंगेशकर की आवाज़ में। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10:30 हुए हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें। चांदनी रातें के श्रोताओं को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आए हैं एक बार फिर प्यार, एहसास और मधुर संगीत से सजी हुई महफिल। दोस्तों, जब रात की खामोशी में चांद अपनी चांदनी बिखेरता है, जब ठंडी हवाएं दिल के तारों को छू जाती हैं, तब याद आते हैं कुछ प्यारे से पल, कुछ अनकहे जज्बात और कुछ सदाबहार गीत। ऐसे ही सुहानी रात को और भी हसीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं गीतों की एक खूबसूरत सी श्रृंखला। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की महफिल की इस पहले गीत के साथ।

तो दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि प्यार का एहसास हर दिल में अलग होता है। किसी के लिए ये मुस्कान है, किसी के लिए मीठी सी याद। चांदनी रातों में अक्सर दिल अपनी पुरानी यादों के पन्ने पलटने लगता है। उन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए पेश है कार्यक्रम का अब अगला नगमा।

रात जितनी गहरी होती जाती है ना दोस्तों, संगीत का जादू उतना ही बढ़ता जाता है। कभी कभी कोई गीत हमारी जिंदगी की कहानी बन जाता है और उसकी पंक्तियां दिल की आवाज लगने लगती है।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ अब आज का चांदनी रात कार्यक्रम का सफर होता है पूरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज अ
3: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर समाप्त होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।